दिन है आज के प्रसारण में। आज है 8 अक्टूबर 2026 दिन वीरवार, अश्विन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, 2083 विक्रम संवत। अम्बाला में सूर्योदय होगा 6:20 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:00। आसमान की ऊंचाइयों को छूकर जो देश की हिफाजत करते हैं, उन पराक्रमी वायु योद्धाओं के साहस को हमारा सलाम। भारतीय वायु सेना दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।

शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का भाव सहमति होने पर हिंसा और अपराध वृत्ति का अभाव होगा तथा हर तरफ मंगलमय वातावरण निर्मित होगा।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

तुम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का

बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010।

आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता हमसफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। प्रस्तुत है कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए, जरा याद करो कुर्बानी, एपिसोड 3। आज का कार्यक्रम वायुसेना विशेष है। कार्यक्रम के लेखक एवं प्रस्तुतकर्ता नरेश शर्मा, रिकॉर्डिस्ट राहुल अलियान, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी।

FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो, और मैं हूं आपका रेडियो हम सफर नरेश शर्मा। दोस्तों, हमारी सेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में गिनी जाती है। भारतीय थल सेना के गुर्राहट दुश्मनों के करेज में कंपकंपी ले आती है, और वहीं भारत की जल सेना विशाल समुद्र को शांत रखती है। लेकिन क्या आपने कभी इस चीज के ऊपर गौर किया है कि जल और थल की भांति आसमान पर भी सीमाएं होती हैं। अंतरराष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार सभी देशों को अपनी अपनी सीमाओं और रेखा के बीच में रहना होता है, परंतु जब कभी किसी दुश्मन का समय खराब होता है ना, तो वो भारत की वायु सीमा का उल्लंघन करता है, या वायु सीमा के रास्ते हमारे राष्ट्र में अवैध गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। कई बार दुश्मन वायुमार्ग से चुपके से हमारी सीमा में कुछ हलचल कर जाते हैं, कुछ ऐसी हरकत करते हैं जिससे हमारे राष्ट्र की अखंडता और नागरिकों को नुकसान पहुंचाया जा सके। तो ऐसे में हमारी सक्षम वायुसेना ऐसा सबक सिखाती है कि दुश्मन बरसों तक उस चोट को भूल नहीं पाता। अभी कुछ दिन पहले की तो बात है, जब दुश्मन ने भारतीय पायलट अभिनंदन को हिरासत में रखने का ना सिर्फ बदला चुकाया था, बल्कि भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए एयर स्ट्राइक ने दुश्मन के घर में घुसकर ऐसा तांडा मचाया कि दुश्मन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, और उसने अभिनंदन को बिना शर्त सम्मान भारत को वापस कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि ऐसा न करने की स्थिति में उसका नाम निशान इतिहास के पन्नों तक सिमट जाएगा। तो ये खौफ है भारतीय वायुसेना का। तो इसी बहादुर वायुसेना के सम्मान में हम अपना आज का विशेष कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए विशेष रूप से वायुसेना को समर्पित करते हुए पेश करते हैं रेडियो विचस्ता की ये विशेष पेशकश वायु सैनिकों के लिए। नजरों को नजारों की कमी तो नहीं, नजरों को नजारों की कमी तो नहीं, फूलों को बहारों की कमी तो नहीं, वो कबूल कर लें तो शुक्र खुदा, वरना आसमां को सितारों की कमी तो नहीं, आसमां को सितारों की कमी तो नहीं।

और दोस्तों अगर कोई जमीन पर गिर जाए ना तो उठ जाता है, लेकिन आसमान से गिरा हुआ तो उठ ही जाता है। यानी वायुसेना में रहकर देश की सेवा करना बेहद जोखिम भरा काम है, लेकिन फिर भी हमारे वीर वायु सैनिक अपने हर कर्तव्य को हंसते हंसते निभाते चले जाते हैं, दिल में उमड़ते हुए यादों के बादल, लेकिन चेहरे पर वही मुस्कान, क्योंकि कुछ लिख नहीं पाते, कुछ सुना नहीं पाते, हाले दिल जुबां पर ला नहीं पाते। वो फूल भेजते हैं मोहब्बत के नाम पर वो समझ नहीं पाते, हम समझा नहीं पाते।

याद है ना? आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, हम वाला का अपना रेडियो, और मैं आपका रेडियो हम सफर नरेश शर्मा आपको सुना रहा हूँ हमारा विशेष कार्यक्रम वायु सैनिकों के लिए। ये जो मिलन और जुदाई है ना, इनके बीच अक्सर जंग चलती रहती है। कभी जीत मिलन की होती है तो कभी जुदाई की। हमने एक लौ मोहब्बत की जला रखी है, हमने एक लौ मोहब्बत की जला रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है।

जब कोई दुश्मन हमारी ओर आंख उठाकर देखता है ना, तब हमारी वायुसेना उसका ऐसा हाल कर देती है कि उसकी कई नस्लें सदियों तक भूल नहीं पाती हैं, और शर्म की वजह से वो अपनी गलती अपनी औलादों को बता भी नहीं पाते, क्योंकि भारतीय वायुसेना कभी किसी को छेड़ती नहीं है, और हाँ अगर इनको छेड़ दिया जाए तो फिर ये किसी को छोड़ती भी नहीं है। दुश्मन बस मिन्नतें करता है और ये कहता रहता है कि

चोर को क्यों चोर कहा, क्यों सहे बात कहे, काहे न कुछ और कहा। क्यों सहे बात कहे, काहे न

जैसे सच बोलने वालों की जरूरत ही नहीं, जैसे सच बोलने वालों की

भाई बातें बनाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन वायु सैनिक की जिंदगी अपनाना बहुत मुश्किल होता है। इनके जीवन में त्याग, समर्पण और अनुशासन बहुत प्रमुख होते हैं। इनकी दिनचर्या ही इनकी आदत बन जाती है। रेडियो वितस्ता भारतीय वायुसेना के प्रत्येक सैनिक को, चाहे वो किसी भी पद पर तैनात हो, प्रणाम करता है, सलाम करता है, क्योंकि आपका राडार यानी दुश्मन का संहार, हम कभी भी आपकी कुर्बानियों का बदला नहीं चुका सकते। हम पीढ़ियों तक आपको भूल नहीं पाएंगे, और सच पूछिए तो हम भुलाना भी नहीं चाहते।

वो अंग्रेजी में कहावत है ना कि स्काई इज द लिमिट, लेकिन आप तो उस कहावत को भी बहुत पीछे छोड़ गए, क्योंकि आपकी तो कोई सीमा ही नहीं है। अच्छा सैनिक भाई, जरा ये बताओ कि कभी आपके दिल में भी कुछ ना कुछ तो होता होगा, कभी तुम्हारे दिल की जमीन भी तो किसी ना किसी को याद करती होगी। वैसे एक बात बताऊं कि दिल की जमीन पर हर फसल यादों की बोओगे, दिल की जमीन पर हर फसल यादों की बोओगे, जिसको जितना याद करोगे उतना रोओगे।

सैनिक भाइयों, आपको हमारा ये विशेष कार्यक्रम वायु सैनिकों के लिए कैसा लगा हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप कुछ खास सुनना चाहें तो हमें हमारे मोबाइल नंबर 7056413010 पर फोन कीजिए, हम आपकी फरमाइश को जरूर पूरा करेंगे। आप हमारे सिरों के ताज हैं, अगर हम आंखें हैं तो आप हमारी पलकें हैं, क्योंकि पलकें आंखों की रक्षक होती है ना। इश्क में कोई खोज नहीं होती, इश्क में कोई खोज नहीं होती, हर किसी से ये हर रोज नहीं होती। हमारी जिंदगी में खुद को बेवजह मत समझना, क्योंकि पलकें कभी आंखों पर बोझ नहीं होती। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा, फोन करना मत भूलना। और अब अपने रेडियो हम सफर रेडियो दोस्त नरेश शर्मा को आज्ञा दीजिए, फिर एक और कार्यक्रम लेकर आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए जरा याद करो कुर्बानी, एपिसोड 3, वायुसेना विशेष। कार्यक्रम को लिखा प्रस्तुत किया नरेश शर्मा ने, रिकॉर्ड किया राहुल अलियान ने, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी का था। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

तुम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

यू आर एंजॉयिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का एक कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

सुनिए और सुनाइए रेडियो विविधता, सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सकारात्मक कहानियों की श्रृंखला में आज लेके आई हूँ एक और कहानी जिसका शीर्षक है गुरु दक्षिणा। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त RJ शिवानी। एक बार एक शिष्य ने विनम्रता पूर्वक अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ अन्य कहते हैं कि जीवन एक खेल है और कुछ जीवन को तो उत्सव की संज्ञा देते हैं, इनमें कौन सही है? गुरुजी ने तत्काल बड़े ही धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, पुत्र जिन्हें गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन एक संघर्ष है, जिन्हें गुरु मिल गया उनका जीवन एक खेल है, और जो लोग गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगते हैं मात्र वे ही जीवन को उत्सव का नाम देने में साहस जुटा पाते हैं। यह उत्तर सुनने के बाद भी शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट ना था, गुरुजी को इसका आभास हो गया। वह कहने लगे, लो मैं तुम्हें इसी संदर्भ में एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनोगे तो स्वयं ही अपने प्रश्नों का उत्तर पा सकोगे। उन्होंने जो कहानी सुनाई वह इस प्रकार थी। एक बार की बात है कि किसी गुरुकुल में 3 शिष्यों ने अपना अध्ययन संपूर्ण करने पर अपने गुरुजी से यह बताने के लिए विनती की कि उन्हें गुरु दक्षिणा में उनसे क्या चाहिए। गुरुजी पहले तो मंद मंद मुस्कुराए और फिर बड़े स्नेह पूर्वक कहने लगे, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में एक थैला भर के सूखी पत्तियां चाहिए, ला सकोगे? वे तीनों मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि उन्हें लगा वे बड़ी ही आसानी से गुरुजी की इच्छा को पूरी कर सकेंगे। सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र ही बिखरी रहती हैं। वह उत्साह पूर्वक एक ही स्वर में बोले, जी गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। अब वे तीनों शिष्य चलते चलते एक समीपस्थ जंगल में पहुंच चुके थे, लेकिन यह देखकर कि वहां पर तो सूखी पत्तियां केवल एक मुट्ठी भर ही थी, उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वह सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल से कौन सूखी पत्तियां उठाकर ले गया होगा। इतने में ही उन्हें दूर से आता हुआ कोई किसान दिखाई दिया। वे उसके पास पहुंचकर उससे विनम्रता पूर्वक याचना करने लगे कि वह उन्हें केवल एक थैला भर सूखी पत्तियां दे दे। अब उस किसान ने उनसे क्षमा याचना करते हुए उन्हें यह बताया कि उनकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि उसने सूखी पत्तियों का ईंधन के रूप में पहले ही उपयोग कर लिया था। अब वे तीनों पास में ही एक गांव की ओर इस आशा से बढ़ने लगे कि हो सकता है वहां उस गांव में उनकी कोई सहायता कर सके। वहां पहुंचकर जब उन्होंने एक व्यापारी को देखा तो बड़ी ही उम्मीद से उससे एक थैला भर सूखी पत्तियां देने के लिए प्रार्थना करने लगे, लेकिन उन्हें फिर से एक बार निराशा ही हाथ लगी क्योंकि उस व्यापारी ने तो पहले ही कुछ पैसे कमाने के लिए सूखी पत्तियों के दोने बनाकर बेच दिए थे। लेकिन उस व्यापारी ने उदारता दिखाते हुए उन्हें एक बूढ़ी माँ का पता बताया जो सूखी पत्तियां एकत्रित किया करती थी, पर भाग्य ने यहाँ पर भी उनका साथ नहीं दिया क्योंकि वह बूढ़ी माँ तो उन पत्तियों को अलग अलग करके कई प्रकार की औषधियां बनाया करती थी। अब निराश होकर वह तीनों खाली हाथ ही गुरुकुल लौट गए। गुरुजी ने उन्हें देखते ही स्नेह पूर्वक पूछा, पुत्रों ले आए गुरु दक्षिणा? तीनों ने सर झुका लिया। गुरुजी द्वारा दोबारा पूछे जाने पर उनमें से एक शिष्य कहने लगा, गुरुदेव हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए, हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र ही बिखरी रहती होंगी, लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि लोग उनका भी कितनी

तरह से उपयोग करते हैं। गुरुजी पहले की तरह ही मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक बोले, निराश क्यों होते हो, प्रसन्न हो जाओ। यही ज्ञान की सुखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती, बल्कि उनके भी अनेक उपयोग हुआ करते हैं। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो। तीनों शिष्य गुरुजी को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने घर की ओर चले गए। वह शिष्य जो गुरु की कहानी एकाग्रचित होकर सुन रहा था, अचानक बड़े ही उत्साह से बोला, गुरुजी अब मुझे भी अच्छी तरह से ज्ञात हो गया है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपका संकेत वस्तुतः इसी ओर है ना, कि जब सर्वत्र सुलभ सुखी पत्तियां भी निरर्थक या बेकार नहीं होती हैं, तो फिर हम कैसे किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छोटा और महत्वहीन मानकर उसका तिरस्कार कर सकते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार तक सभी का अपना अपना महत्व होता है। गुरुजी भी तुरंत ही बोले, हाँ पुत्र, मेरे कहने का भी यही तात्पर्य है कि जब भी हम किसी से मिलें तो उसे यथा योग्य मान देने का भरसक प्रयास करें, ताकि आपस में स्नेह, सद्भावना, सहानुभूति एवं सही शरणता का विस्तार होता रहे और हमारा जीवन संघर्ष के बजाय उत्सव बन सके। दूसरे यदि जीवन को एक खेल ही माना जाए तो बेहतर यही होगा कि हम निर्विक्षेप स्वस्थ एवं शांत प्रतियोगिता में ही भाग लें और अपने निष्पादन तथा निर्माण को ऊंचाई के शिखर पर ले जाने का अथक प्रयास करें। अब शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट था। अंततः मैं यही कहना चाहती हूँ कि यदि हम मन, वचन और कर्म इन तीनों स्तर पर इस कहानी का मूल्यांकन करें तो भी यह कहानी खरी ही उतरेगी। सबके प्रति पूर्वाग्रह से मुक्त मन वाला व्यक्ति अपने वचनों से कभी भी किसी को आहत करने का दुस्साहस नहीं करता। उसकी यही ऊर्जा उसके पुरुषार्थ के मार्ग की समस्त बाधाओं को हर लेती है। वस्तुतः हमारे जीवन का सबसे बड़ा उत्सव पुरुषार्थ ही होता है, ऐसा विद्वानों का मत है। ये थी आज की कहानी। बहुत जल्द ही एक नई कहानी के साथ दोबारा आपसे रूबरू होंगी। नमस्कार।

वास्तव में जीवन चलना है, ढलना है, जलना है, रूहों का सफर है, इनके साथ जन्म जन्म के रिश्ते बंधे हैं, कोई चला गया तो कोई जाने की तैयारी में है, समा है 100 बरस का पर पल भर की खबर नहीं।

क्यों तुम याद आते हो अक्सर इस खामोशी में। जमाने बीत गए, बदलते रहे मौसम, चांदनी रातों में चिनारों की ठंडी छांव तले आंखों में बसते हैं ख्वाब, और कभी इन ख्वाबों की ताबीर हुआ करते थे आप, पर बिछड़ते इन मौसमों के संग ख्वाब भी टूट गए और बिखर गई चांदनी।

पंछियों की टोलियां रवां हैं अपने सफर पे, और दौराने सफर अपनी परवाज लिए आकाश की बुलंदियों को छूना ही ये अपना लक्ष्य मानते हैं। इनके लिए सरहदें कोई मायने नहीं रखते हैं, इनको बस उड़ने से मतलब है। बादलों में गुम हो जाना शायद इनका मकसद रहता है। फिर धीरे धीरे ये अपना सफर तय कर लौट आते ही जमीन पर इन पीले फूलों के खेतों में शबनमी बूंदों से नहा लेते हैं।

जमीन पे तुझे जाना है फलक पर अब, पर मिलोगे शायद तुम वहां, धड़कने ही उदास तुम्हारे बगैर। धड़कने ही उदास तुम्हारे बगैर और चाहते ही बेअसर। अब यहां प्यार चुभता है क्योंकि फासले ही दरमियां, तभी मोहब्बत बेमाने है। सुरीली यादें ही जावेदां जो बह जाती हैं अक्सर मेरे साथ।

चांदनी रातों के बाद एक ऐसी ही सुबह का इंतजार रहता है जो मेरे लिए गुलाबी सुबह बन जाए। आओ, आओ तुम्हें इन बर्फीली हवाओं का एहसास कराएं। चल मेरे साथ कोहसारों के उस पार जहां पल भर के लिए अब मर जाएं।

दोस्त, आपको आज का हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब आज के लिए बस इतना ही, चाहेंगे आपसे इजाजत।

आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

मिली जुली गीतों की इस महफिल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं रमेश मराठा। नमस्ते, आदाब। कहीं उम्मीदों का चिराग बुझ गया, तारों भरी रात ने दम तोड़ दिया।

दिन बदलेंगे इसके भरोसे मत रहना। सावन का महीना आते ही बादल तो छा जाएंगे हर हाल में, लेकिन बरसेंगे इसके भरोसे मत रहना। बहती नदी में कच्चे घड़े रिश्ते नाते हुस्न वफा दूर तलक ये बहते रहेंगे इसके भरोसे मत रहना।

तन्हाई में पुकारा किसने, इस लम्हे को सवारा किसने, दिल में लहर उठी है कोई, मुझको अभी पुकारा किसने, सब कुछ डूब गया साहिल पर, ऐसे किया किनारा किसने, मिलने लगा है इसमें सुकून, अब दर्द बनाया चारा किसने, बेहोशी के इस आलम से मुझको आज उभारा किसने।

रात धीरे धीरे खो जाती है अंधेरे के आगोश में। टिमटिमाते तारे आसमां में बिखराते हैं नजारे। चांद लगता है ऐसे जैसे बेकरार हो किसी की याद में। शाम ढलती हुई पर्वतों के पेड़ों पर मानो कुछ पल के लिए ठहर जाती है और सुरमई उजालों में चंपई अंधेरा एहसास दिलाता है दिलवर का, जो उससे मिलकर

के समंदर में हसी लम्हे तलाशते कई बार गुजर जाती है तमाम जिंदगी, मगर वो खलिश, वो चुभन, वो प्यार का मीठा सा एहसास नहीं मिलता। और यूं ही जिंदगी गुजर जाती है बिना कुछ कहे।

एहसास एक जज्बा जो बसता है हम सभी की धड़कनों में, महसूस होता है सांसों में और आता है नजर चेहरे पे। आज भी ठहरे सागर में लहरों के कारवां बेताब हैं रक्स करने को, आज भी आईने दिल पर एक साया बेकरार है अपना अक्स भरने को। शायद तुम्हें मालूम नहीं तेरी तलाश में बहारों के फूल महके हैं, बुलबुल चहके हैं। क्यों जर्द पत्तों के मौसम में गुम हो गई हो,

दोस्तों मिले जुले गीतों का ये सफर आपने तय किया अपने रेडियो दोस्त परमेश मराठा के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा बताइएगा जरूर। अब चाहेंगे आपसे इजाजत। नमस्ते।

0: ये फिजाए।
1: हम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।
2: ये है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का पहला वेब रेडियो, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से। मैं बानी सेठी, थर्ड स्टैंडर्ड, कॉर्नर ऑफ जीसस एंड मेरी अंबाला कैंट।
3: रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से। सुनते रहिए रेडियो वितस्ता।
4: सत श्री अकाल अंबाला, यह है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हाँ शिवम, पंजाबी यूनिवर्सिटी तो लाइव तो लैके आ रहा हाँ थोड़े लिए अंबाला का पहला वेब रेडियो, आपका अपना रेडियो, थोड़ी आवाज दिल तो।

0: अपने ही अपनों से करते हैं अपनेपन की अभिलाषा, पर अपनों ने ही बदल रखी है अपनेपन की परिभाषा। ये है रेडियो विविधता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से। मैं किरणी विद थिएटर ग्रुप अंबाला से।
1: रेडियो विविधता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से। सुनते रहिए रेडियो विविधता।
2: सत श्री अकाल अंबाला, हुण असीं जुड़ चुके हैं रेडियो विविधता नाल, हम सफर जिंदगी का। यह अंबाला का पहला वैब रेडियो, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल तों।

0: तहजीब सिखा दी मुझे एक छोटे से मकान में, दरवाजे पे लिखा था थोड़ा झुक कर चलिए। ये है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला कैंट का पहला वेब और इंटरनेट रेडियो, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से। मैं हूँ विनोद तलाशी, चंडीगढ़ से।
1: रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से। सुनते रहिए रेडियो वितस्ता।
2: युवा वह अवस्था होती है जब कोई लड़का बचपन की उम्र को छोड़ धीरे धीरे व्यस्तता की ओर बढ़ता है। इस उम्र में अधिकांश युवा लड़कों में एक जवान बच्चे की जिज्ञासा और जोश तथा एक व्यस्क के ज्ञान की उत्तेजना होती है। किसी भी देश का भविष्य उसके अपने युवाओं पर निर्भर होता है। इस प्रकार बच्चों की सही तरीके से पोषण करने पर बहुत जोर दिया जाना चाहिए ताकि वे एक जिम्मेदार युवा बन सके। ये है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला कैंट का पहला वेब और इंटरनेट रेडियो, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से। मैं अखिलेश दास, हाई स्क्वेयर आई टी, हिंजेवाड़ी, पुणे।

0: नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आप सभी सुनने वालों का रेडियो उत्तेजना पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेडियो उत्तेजना वेद थिएटर ग्रुप एंड कल्चर सोसाइटी रजिस्टर्ड के पिछले 5 सालों की कड़ी मेहनत का एक परिणाम है। हम चाहते हैं कि रेडियो उत्तेजना के जरिए अम्बाला की विश्व भर में एक अलग पहचान बने। हम आप सभी को तहे दिल से आमंत्रित करते हैं कि आप रेडियो उत्तेजना आए, अपनी आवाज दें और हम उस आवाज को अम्बाला की आवाज बनाएंगे। ये है रेडियो उत्तेजना, हम सफर जिंदगी का, अम्बाला का पहला वेब और इंटरनेट रेडियो, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से। मैं हूँ धीरज गुलाटी, वेद थिएटर ग्रुप, अम्बाला कैंट।
1: रेडियो उत्तेजना, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से। सुनते रहिए रेडियो उत्तेजना।
2: एक समय में एक ही काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। ये है रेडियो उत्तेजना, हम सफर जिंदगी का, अम्बाला कैंट का पहला वेब और इंटरनेट रेडियो, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से। मैं हूँ विनोद सिंह, थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम महावीर इंजीनियरिंग कॉलेज, अम्बाला सिटी।

एक बार फिर मैं सारे का स्वागत करता हाँ प्रोग्राम दिल दियां गल्लां दे विच। ते ए प्रोग्राम का अंतिम भाग है। असी गल कर रहे हाँ प्यार दी। प्यार का एक होर रूप है जुदाई। इस विच जा तां बंदा फिर कामयाब हुंदा है ते जा फिर नहीं। जिवें कि असी प्रोग्राम दे विच पहला ही गल कर चुके हाँ कि प्यार एक एहसास है ते रब नू पाउण दा ए इको एक साधन है। श्री गुरु नानक देव जी भी कहिंदे ने कि बिन प्यार रब दी प्राप्ति नहीं हो सकती। इसे तरह बुल्ले शाह जी रब नू अपना महबूब बना उना दी याद दे विच दिन रात नचदे सी। ठीक इसे तरह मीरा बाई कृष्ण भगवान दे प्यार विच कमली होई फिरदी सी। अखीर विच असी इस सिट्टे ते पहुंचे हाँ कि प्यार रब दा दूजा नां है। इहदे नाल ही मैं प्रोग्राम दिल दियां गल्लां तों विदाई लैंदा हाँ ते फिर मिलांगे। सारिआं दा रब राखा। अपनी सेहत दा ध्यान रखो। जय हिंद जय भारत।

0: सत्य को हजार तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। यह है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला कैंट का पहला वेब और इंटरनेट रेडियो, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से। मैं समीर को थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम महावीर इंजीनियरिंग कॉलेज अंबाला सिटी।
1: रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से। सुनते रहिए रेडियो वितस्ता।
2: अपने ही अपनों से करते हैं अपनेपन की अभिलाषा, पर अपनों ने ही बदल रखी है अपनेपन की परिभाषा। ये है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से। मैं किरणी विथ थिएटर ग्रुप अंबाला से।

0: मेहनत एक ऐसी सुनहरी चाबी है जो बंद भाग्य के दरवाजे भी खोल देती है। ये है रेडियो विकसता, अंबाला कैंट का पहला वेब और इंटरनेट रेडियो। आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से। मैं सागर, पोस्ट ऑफिस एवं एलआईसी अभिकर्ता, अंबाला कैंट।
1: रेडियो विकसता, हम सफर जिंदगी का। आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से। सुनते रहिए रेडियो विदस्ता।
0: उदय मनाते अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव सफूर्ति, नव प्राण भरो। मैं हूँ जितेंद्र गुप्ता, अभिकर्ता भारतीय जीवन बीमा निगम अंबाला के। यह है रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला कैंट का पहला वेब और इंटरनेट रेडियो। आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।

0: 90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: यू आर लिसनिंग FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: हाथ छोड़ो,
1: देखा दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया था हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

0: ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: You are listening FM 90.0 MHz Radio Vitasta, Hamsafar Zindagi Ka. Ambala Kent's first community radio, licensed by Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.

0: दिल तो रुकती नहीं, धड़कता है दिल तो थकता नहीं, बस इतनी सी देखभाल मांगता है, वरना ये किसी को कुछ कहता नहीं। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। विदस्ता की तरह जिंदगी भी बहती रहती है और उस बहाव को चलाने वाली धारा है हमारा दिल। आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। और विश्व हृदय दिवस पर आज हमारी बात सिर्फ और सिर्फ आपके दिल के नाम। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोली और इस कार्यक्रम में आज मेरा साथ देंगे।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। नदी में पानी साफ और बहाव खुला रहे तो किनारे हरे भरे रहते हैं, ठीक वैसे ही दिल में खून का भाव सही रहे तो पूरा शरीर खिला रहता है। हमारा दिल दिन भर में लगभग 1,00,000 बार धड़कता है बिना किसी छुट्टी के।
0: जी हां श्रोताओं, आज हम बात करेंगे दिल की और कोशिश करेंगे कि आपको वो सारी जानकारी देंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है और साथ में रेडियो विदस्ता की जिम्मेदारी भी। हम चाहते हैं कि अंबाला के सभी श्रोताओं का और जितने भी हमारे श्रोता है वो स्वस्थ रहे, खास करके अपने दिल की देखरेख करें और उसका ख्याल रखें। कुछ बिंदु हम आपके सामने रखेंगे। जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारा दिल भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी उम्र भी बढ़ जाती है, तो बहुत सारे बिंदु हम आपके लिए लाए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता के साथ। हमारी उम्र के बढ़ने के साथ साथ दिल की उम्र भी बढ़ती है। 25 की उम्र के बाद हर 10 साल में ऐसे बदलता है दिल। 20 से 25 की उम्र में दिल सर्वाधिक युवा होता है। इसके बाद हर 10 साल के प्रभाव दिल पर साफ दिखने लगते हैं। दिल सिर्फ धड़कता नहीं, उम्र के साथ बदलता भी है। 25 की उम्र के बाद दिल और उसकी सेहत में होने वाले बदलावों को समझिए। जानिए उन खोजों को जिन्होंने हृदय रोगों के इलाज में बड़े बदलाव किए हैं। ये सारी जानकारी जो हम आप तक ला रहे हैं, इसको तैयार किया है डॉक्टर अश्विन मेहता ने, जो डायरेक्टर हार्ट फेलियर प्रोग्राम सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में है। 30 से 40 की उम्र 5 से 10% तक कम हो सकती है ब्लड पंप करने की क्षमता। अधिकतम हार्ट रेट और व्यायाम के दौरान दिल की पंपिंग क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। दिल की ब्लड पंप करने की अधिकतम क्षमता 5 से 10% कम हो सकती है। ध्यान रखें, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर और कमर एवं हिप्स के अनुपात की जानकारी जरूर रखें। परिवार में दिल से संबंधित समस्या रही है तो जरूर पता करें।
1: 40 से 50 साल दिल की मांसपेशियों और आर्टरीज में बढ़ने लगती है शक्ति। दिल की मांसपेशियां कुछ मोटी व कम लचीली हो सकती हैं। बड़ी धमनियों की लोच घटने लगती है। रक्त को आगे ले जाने के लिए दिल को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। ध्यान रखें, इस उम्र में वजन पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है। खराटों को नजरअंदाज ना करें, इनका इलाज कराएं।
0: 50 से 60 साल दिल तक ऑक्सीजन पहुंचाने की कॉरोनरी आर्टरीज की क्षमता घटने लगती है। दिल की धमनियों की अंदरूनी परत की वो क्षमता जिसके जरिए वो जरूरत के अनुसार रक्त प्रवाह को नियंत्रित करती है घटने लगती है। ध्यान रखें, सप्ताह में 2 दिन स्क्वैट्स, वेट ट्रेनिंग या अन्य ऐसी ही एक्सरसाइज करें। ये मांसपेशियों का लचीलापन बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है।
1: 60 से 70 साल दिल की रिजर्व क्षमता कम हो जाती है। शरीर की मांग पर शक्ति नहीं बढ़ा पाता। जरूरत पड़ने पर कार्य क्षमता बढ़ा लेने की दिल की ताकत कम होने लगती है। तेज चलना, सीढ़ियां चढ़ना, लंबे समय तक व्यायाम करने पर जल्द थकान महसूस हो सकती है। ध्यान रखें, लेटने पर सांस फूले या पैरों टखनों में नई सूजन दिखे तो दिल की जांच कराएं। दिल की धमनियों का कैल्शियम स्कोर जरूर चेक करवाएं।
0: हमारे जीवन के 250 मिनट क्यों जरूरी है? 2024 के एक शोध के अनुसार यदि सप्ताह में 250 मिनट यानी करीब 4 घंटे मध्यम से तेज गति की शारीरिक एक्टिविटी की जाए तो दिल को सर्वाधिक फायदा होता है। ये शोध ब्रिटेन में 76,074 लोगों पर किया गया था। तो याद रखें, सप्ताह में 4 घंटे मध्यम से तेज गति की शारीरिक एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए।

0: आइए आपको बताते हैं दिल को सेहतमंद रखने का फार्मूला। ये पांच बातें बहुत काम की है। रोज कुछ मिनट तेज चलिए या दौड़िए। रोजाना 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक दिल की बीमारियों का खतरा कम कर सकती है।
1: अपने दिन भर के भोजन में आधी मात्रा कई तरह की सब्जियों और फलों की रखें। इससे आपका दिल मजबूत बनता है।
0: व्यायाम की आदत बनाएं। सप्ताह में 1 घंटे वेटलिफ्टिंग हार्ट स्ट्रोक का खतरा 40-50% तक कम कर सकती है।
1: ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर की नियमित जांच कराएं। इससे समय पर दिल से जुड़े जोखिमों का पता चलता रहेगा।
0: और आखिरी, हर स्थिति में पर्याप्त नींद लें। रोजाना 7-9 घंटे की नींद आपके दिल और दिमाग की सेहत के लिए बेहद

0: आपको बताते हैं हेल्दी हार्ट के कुछ टिप्स। दिल की सेहत के 3 संकेत और 1 जरूरी बचाव। नंबर 1, मसूड़ों की बीमारी से धमनियों में प्लाक जमने, हार्ट अटैक और स्ट्रोक तक का खतरा बढ़ जाता है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की शोध के अनुसार।
1: दूसरा, हाथों की मजबूत पकड़ भी दिल की सेहत का जबरदस्त संकेत हो सकता है। लैसेट के अनुसार यह दिल की सेहत का बीपी से सटीक प्रमाण है।
0: तीसरा, सामाजिक अलगाव और अकेलापन से हार्ट अटैक, स्ट्रोक या मौत का खतरा 30% तक बढ़ जाता है, हार्वर्ड हेल्थ द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार।
1: चौथा, फ्लू वैक्सीन लगवाने से हार्ट अटैक का खतरा 28%, मिनी स्ट्रोक का 47% और कार्डियक अरेस्ट का खतरा 85% तक कम होता है, वेब एमडी और हार्वर्ड की रिसर्च के अनुसार।

0: जब दिल कहे कि कुछ ठीक नहीं तो उसकी आवाज को टालिए नहीं। अगर सीने में दर्द या भारीपन, सांस फूलना, दर्द का कंधे या जबड़े तक जाना महसूस हो तो एक पल भी मत गंवाइए। फौरन 108 एम्बुलेंस या 112 पर कॉल कीजिए और अस्पताल पहुंचिए। सही वक्त पर पहुंचना ही जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन सकता है।
1: दिल सलामत तो हर सफर आसान, दिल की हिफाजत ही असली पहचान। तो दोस्तों, आज अपने दिल से एक वादा कीजिए और अपनों से भी करवाइए। ये संदेश अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों तक जरूर पहुंचाइए।
0: जी हां श्रोताओं, इस साल के विश्व हृदय दिवस पर ये जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। ये केवल एक ही दिन के लिए नहीं है, ये पूरी जिंदगी के लिए है, ताकि हम अपने सेहत को अच्छा रखे, सुचारू रूप से अपनी जिंदगी को जिए और अपने दिल का ख्याल रखें, क्योंकि दिल हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो जीवन भर बिना रुके रक्त पंप करता रहता है। दिल है तो सारी दुनिया है। इन्हीं शब्दों और इन्हीं भावनाओं के साथ अब हम आपसे लेते हैं आज्ञा। आप सुनते रहिए रेडियो विदस्ता FM 90.0 MHz। बहते रहिए, धड़कते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और अब मुझे भी दीजिए आज्ञा, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विस्तार। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अम्बा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अम्बा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व है।

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुले आम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें 1.63 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाए।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है, जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की, जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ। अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हो तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत, जो आज भी जीवित है। अंबाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अंबाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है। और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अंबाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार।

0: श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी, दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है, वहां लहर का संगीत, युगो युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की ये रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा, आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

0: बाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: नब्बे अशारिया सिफर FM पर सामाइन की खिदमत

मेरा हरियाणा। तो इसे हरियाणा के बारे में और ज्यादा जानने वास्ता मैं लेकर आई हूँ हरियाणवी कार्यक्रम की वो छार, जिसमें थानू लेकर जाऊंगी अलग अलग गांव के अलग अलग लोगों के बीच में, और थन जान सकांगे मारे हरियाणा के रीति रिवाजा के बारे में। तो सुनना ना भूलियो हर शनिवार और रविवार सवेरी 7:05 पा और दोपहर 2:00 सिर्फ और सिर्फ थारे अपने रेडियो रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ सा। धन्यवाद, सुनते रहो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता।

तुझसे लफ्जों का नहीं रूह का रिश्ता है मेरा। तू मेरी सांसों में बसी है खुशबू की तरह।

ये दिल लगी कहीं छूट न जाए पीछे, क्योंकि अपनी दुआओं में मैं रब से सिर्फ तुम्हें मांगता हूं। हर पल चुरा लेता हूं तुम्हें तुम्हें से। इन शामों में यहीं पे आकर तुम्हें ढूंढता हूं, तुम्हारा इंतजार करता हूं बर्फ पिघलने तक, इन मौसमों के गुम हो जाने तक, कहीं ये दिल लगे ना छूट जाए। चश्मे पर आपको समंदर लिखूं या न लिखूं, तुमसे नजरें मिला के बार बार ये ख्याल आया।

बस जिंदगी यूं ही गुजर गई बिना बात कहे। इस अंजमन में बातें हुई पर वो बात रह गई जो सीने में

काश कोई सुनने के लिए फिर से मुझे आवाज देता, मुझे पुकारता, मुड़ के देखता, ठहरता चंद पलों के लिए। शायद शायद मैं अपनी बात कह पाता।

ढलते ही सुबह का उजाला एक नई उम्मीद को जन्म देती है। फूलों के चमन में बुलबुल शबनमी बूंदों में नहा रहे हैं और ये दौड़ते बादल सारे आकाश को नीला करते हुए खुद को छिपा रहे हैं बादलों की कतारों में। यह हमारी सुबह का आगाज मुस्कुराहट से भरपूर।

0: परछाइयों के इस शहर में अब खाली है मेरा आंगन। काश कहीं से धूप निकल आती, शायद हम उनके दीदार कर पाते, उनको फिर से अपने सीने की आग से रूबरू कराते और ये बताते कि मैं अभी भी सुलग रहा हूं तुम्हारी मोहब्बत में। तस्कीने दिल की खातिर वादा तो कीजिए, हम जानते हैं आपसे आया।
1: यू आर लिस्निंग 90.0 FM रेडियो विद स्टार, हम सफर जिंदगी का।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान एपिसोड 7। उम्र बढ़ने के साथ साथ सक्रिय जीवन यानी एक्टिव एजिंग। इस कार्यक्रम को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित है। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे किन्नी दास, भारत सोपोरी व राहुल अलियान। नैरेटर की भूमिका निभाएंगे मुकेश गुप्ता। रिकॉर्ड, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी।

0: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान के एक और अंक में हम आपके घरों तक पहुंच गए हैं। देश के 200 सामुदायिक रेडियो अपनी भाषाओं और बोलियों में आप लोगों तक केंद्र सरकार की योजनाओं को आप तक ढेर सारी जानकारियों के साथ पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं। इस प्रयास में आपके अंचल में हम अपने रेडियो के माध्यम से कितने सफल हो पा रहे हैं ये तो आपके पत्र और फोन ही बता रहे हैं, और हमारी आपसे उम्मीद है कि इन जानकारियों का लाभ आप खुद या अपने घर के बुजुर्गों को जरूर दिलवाएं। आखिरकार सरकार ये योजनाएं इन्हीं के लिए तो संचालित कर रही है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है जो समाज में दिव्यांगजन, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग, बुजुर्गों और अन्य विशेष समूहों के लिए समय समय पर नई योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित करता है। वर्तमान में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम के साथ राष्ट्रीय हेल्पलाइन सेवा 14567, वृद्धावस्था देखभालकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम, वृद्धावस्था विकास योजना, वयोश्री योजना, मोतियाबिंद ऑपरेशन और बुजुर्गों का भरण पोषण का अधिकार जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन योजनाओं और सेवाओं का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आर्थिक समर्थन प्रदान करना है, लेकिन इन योजनाओं का फायदा लेने के लिए बुजुर्गों को खुद को सक्रिय बनाकर रखना भी तो जरूरी है। कैसे? आज भारत दादू और लक्ष्मी आ गए हैं योजनाओं के बारे में बताने के साथ ही ये बताने के लिए कि उम्र बढ़ने के साथ वृद्धजन सक्रिय जीवन कैसे जी सकते हैं।
1: बुढ़ापा अभिशाप नहीं, बुढ़ापा बनेगा उत्सव जिंदगी का। अटल वयो अभ्युदय योजना बनाए बुजुर्गों की जिंदगी को आसान, लौटाए उनका खोया हुआ स्वाभिमान। कहा जाता है बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है। उम्र बढ़ने के साथ हमारे बुजुर्गों को होती है कई तरह की शारीरिक समस्याएं। ऐसे में गरीब असहाय वरिष्ठ नागरिकों के पोषण के लिए सरकार ने उठाए हैं कदम। अटल वयो अभ्युदय योजना दिलाती है बुजुर्गों को सही पोषक भोजन। लगभग 50,000 बुजुर्गों को लाभ देने के लिए 39.6 करोड़ बजट में आवंटित किए गए हैं, जिससे होगा हमारे वरिष्ठ जनों का अभ्युदय। साथ ही सहारा बनी वरिष्ठ जनों का राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे के हमारे सम्माननीय वरिष्ठों को मिलेंगे सहायक उपकरण और जीवन सहायक यंत्र जैसे व्हीलचेयर, हियरिंग हेड, वॉकर, जिससे खिल उठी हमारे बड़ों की खोई मुस्कान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। CRA द्वारा निर्मित, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: क्या हो गया? सुबह से फोन लगा रही हूँ पर उठा नहीं रहे। फिर से फोन लगाती हूँ लेकिन कोई रिसीव नहीं करता। मम्मी, लगता है दादू को कोई प्रॉब्लम है। सुबह से फोन लगा रही हूँ, घंटी बज रही है लेकिन फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। हेलो हेलो दादू।
3: हाँ बेटा, तुमने फोन किया था क्या?
2: क्या दादू, सुबह से कितनी बार कॉल कर चुकी हूँ। कहाँ थे आप? ठीक तो है? कोई प्रॉब्लम है क्या? तबीयत ठीक है आपकी? अरे बोलिए तो।
3: अरे बेटा, तेरी स्पीड ट्रेन रुके तब तो मैं अपनी बैलगाड़ी चलाऊं।
2: आप मजाक कर रहे हैं दादू, मुझे कितनी फिक्र हो रही थी।
3: देख, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
2: कैसे देखूं? रुकिए, वीडियो कॉल करती हूँ।
3: मेरे पास ऐसा तरीका है कि बिना वीडियो कॉल के भी तू मुझे देख सकती है।
2: कौन सा तरीका? कोई नया इनोवेशन हो गया क्या?
3: नया नहीं, ये तरीका तो सदियों पुराना है, अब लोग इससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते।
2: आप नहीं बदलेंगे दादू, हर बात को पहेली बना देते हैं।
3: तो चल, दोनों मिलकर पहेली सुलझाते हैं।
2: दादू आप?
3: कैसा सरप्राइज दिया?
2: अच्छा, इसलिए सुबह से फोन नहीं उठा रहे थे।
3: और नहीं तो क्या, हमेशा तू ही मुझे अचानक आकर चौंका देती है। मैंने सोचा आज मैं तुझे धप्पा कर देता हूँ।
2: और वो जो आपके घुटनों में दर्द था, थोड़ा बीपी भी बढ़ा हुआ था, उसका क्या?
3: अब भाई, हार्ड मास का शरीर है, कुछ न कुछ तो लगा ही रहेगा। इसका क्या मतलब? हम अपनी बिटिया को सरप्राइज करना छोड़ देंगे?
2: आई लाइक योर एनर्जी दादू, पर सेहत का ध्यान भी रखना चाहिए।
3: वो तो सरकार रख रही है ना।
2: सरकार कैसे?
3: जादू के नंबर से।
2: आप फिर पहेलियां बुझाने लगे।
3: अरे भूल गई, तूने ही तो जादू का नंबर दिया था, 1 4 5 6 7। इस पर फोन करके मैं वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य योजना का पूरा लाभ लेता हूँ।
2: वेरी गुड, ये हुई ना बात।
3: उसी फोन से मुझे राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम का पता चला। मैंने फौरन अपने सब दोस्तों को भी इसकी जानकारी दी।
2: वाओ दादाजी, आपकी अलर्टनेस से तो आप हमारी जनरेशन को कॉम्प्लेक्स दे सकते हैं।
3: तुम लोगों को देखकर तो हमें ऊर्जा मिलती है। तुम्हारी उम्र में हमें ना तो इतना नॉलेज था, ना हम इतने सारे टास्क करते थे।
2: समय के साथ खुद को अपडेट रखना पड़ता है दादू।
3: राइट, इसलिए तो मैं खुद को अपडेट करने आ गया हूँ।
2: समझ गई, मैं बाकी लोगों को फोन करती हूँ, फिर आपकी सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग शुरू करते हैं। तब तक आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए।
3: रेस्ट? किसको चाहिए रेस्ट? 3 घंटे गाड़ी में बैठकर आया हूँ, दौड़ता हुआ थोड़ी ना आया हूँ।
2: आप भी कमाल है दादू, एक्टिव एजिंग का परफेक्ट एग्जांपल। पता है जब मैंने अपने दोस्तों को बताया कि आप ये नया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सीखकर काम शुरू करना चाहते हैं, तो सब इतने एक्साइटेड हुए कि क्या बताऊं।
3: एक्साइटमेंट तो मुझे है लक्ष्मी, रिटायरमेंट के 4 साल बाद फिर से काम शुरू करना जैसे एक नई कहानी की शुरुआत।
2: आप नौकरी से रिटायर हुए थे दादू, काम से थोड़ी, काम तो आप कर ही रहे थे।
3: हाँ, दिन भर में घंटे 2 घंटे बच्चों को पढ़ाना बस, उसके बाद तो सारा दिन खाली बैठता हूँ। क्या फायदा ऐसे काम का?
2: यही तो फायदा है।
3: क्या कि मैं तुझे सरप्राइज करने आ गया?
2: नहीं कि आप नया सॉफ्टवेयर सीखने आ गए।
3: वो तो बच्चों की जरूरत है, गांव में उन्हें ढंग से कंप्यूटर के बारे में बताने वाला कोई नहीं। ये सॉफ्टवेयर उन्हें आगे अपने करियर में काम आएगा। अब वो सब तो यहाँ आ नहीं सकते, ना ही तुम लोग लंबे समय तक वहाँ रह सकते हैं, तो मैंने सोचा मैं ही सीख कर उन्हें सिखा देता हूँ।
2: यही तो फायदा हुआ, 1 घंटे बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में आप एक नया स्किल सीख रहे हैं। ये आपके भी तो काम आएगा, स्किल कभी बेकार नहीं जाती।
3: ये तो 100% की बात कही आपने।
2: दादू हमारी सरकार भी बुजुर्गों को किसी बेहतर काम में लगाए रखने के लिए वयो अभ्युदय योजना चला रही है।
3: पिछली बार तुमने इसकी चर्चा तो की थी, क्या एक शब्द कहा था तूने, वो क्या, एजिंग?
2: एक्टिव एजिंग।
3: हाँ, एक्टिव एजिंग, अभी भी तूने कहा, मैं एक्टिव एजिंग का उदाहरण हूँ। थोड़ा खुलकर बताएगी क्या है ये एक्टिव एजिंग? सरकार की कोई नई योजना है क्या?
2: योजना नहीं दादू, ये एक मॉरल सिचुएशन है।
3: यानी सरकार चाहती है हम जैसे लोग ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहे, ठीक?
2: एकदम ठीक, नौकरी से रिटायर होने पर हम जिंदगी से थोड़ी रिटायर हो जाते हैं।
3: बस हमारे काम की प्रवृत्ति बदल जाती है।
2: क्या बदल जाती है?
3: अरे भाई, पहले हम पैसे कमाने के लिए काम करते थे, अब समय काटने के लिए काम करते हैं।
2: वो भी ठीक है, लेकिन यदि कोई काम करके पैसे भी कमाना चाहे तो सरकार इसके लिए भी एनकरेज करती है।
3: क्या उनके लिए नौकरियों का इंतजाम कर देती है? जवान लोगों को तो बड़ी मुश्किल से नौकरी मिलती है, और तुम हम बुजुर्गों को आमदनी के साधन देने की बात कह रही हो?
2: सिर्फ आमदनी के ही साधन नहीं, बल्कि पेंशन की सुविधा भी। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, अटल पेंशन योजना, ऐसी और भी कई योजनाएं हैं।
3: सच में?
2: आपको यकीन नहीं होता, रुकिए मैं आपकी बात करवाती हूँ।
3: किससे?
2: रुकिए तो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, लक्ष्मी बोल रही हूँ। जी मैंने आपको अपने भारत दादाजी के बारे में बताया था ना? जी जी, वो आ गए हैं, पर वो कुछ जानना चाहते हैं, वो आपसे बात करेंगे।
3: अरे कौन है, मैं क्या बात करूँगा?
2: आपके सब सवालों का जवाब है इनके पास, लीजिए बात कीजिए।
3: अरे जी जी सर, मैं भारत। जी जी, वो एक्टिव एजिंग के बारे में पूछ रहा था। हाँ जी, लक्ष्मी कह रही थी कि सरकार हम बुजुर्गों को भी काम दे रही है। जी जी,
4: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। इस समय हम आए हुए हैं गांव लंढा में और हमारे साथ हैं डॉक्टर जगदीप सिंह जी, जो एक समाज सेवी भी है और एक एजुकेशनिस्ट है, बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारे देश के जो बच्चे हैं उनको ये पढ़ाते हैं, उनकी जिंदगी बनाते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इस बात को भी वहां जरूर करते होंगे कि वो अपने माता पिता के प्रति कितनी जिम्मेदारी रखें और किस तरीके से वो उन बच्चों को पढ़ाते हैं और हमारे देश का निर्माण भी करते हैं। तो आइए जानते हैं डॉक्टर जगदीप सिंह जी से कि वो अपने बारे में, देश के बारे में और हमारे जो देश में वृद्धजनों की संख्या बढ़ रही है उनके बारे में वो क्या विचार रखते हैं, और जानते हैं डॉक्टर जगदीप सिंह जी से। नमस्कार सर।
5: नमस्कार, रेडियो विदस्ता के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज रेडियो विदस्ता की टीम हमारे गांव में पहुंची है, मैं उनका स्वागत करता हूं। और इस प्रकार के जो कार्यक्रम है भारत सरकार और हरियाणा सरकार के जो सौजन्य से चलते हैं, उन कार्यक्रमों को लेकर गांव में जाना और गांव में एक जागरूकता फैलाना, ये रेडियो विदस्ता की पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं। और देखिए, जैसा कि आज का जो विषय है कि बुजुर्गों का जीवन कैसा होना चाहिए, सरकार उनके लिए क्या करती है और उसमें क्या किया जा सकता है। देखिए, मेरा मानना है कि भारतीय एक ज्ञान परंपरा एक ऐसा विषय है। यदि हम गांव की बात करें तो गांव में ये समस्या कम है, क्योंकि गांव में आज भी जो बुजुर्ग हैं उनका डोमिनेट है। आज भी बुजुर्ग अपने काम स्वयं करते हैं, सुबह से लेकर सैर करना, उसके बाद अपने खेत में जाना, उसके बाद अपने दिनचर्या के कार्य करना और गांव में चौपाल में जाना, सबसे मिलना। और यहाँ तक कि मैं देखता हूँ जब कोई शादी होती है गांव में या कोई डेथ हो जाती है या कोई और भी प्रोग्राम है, सारे लोग आपस में बैठकर मिल बात करते हैं और उसके सुख में और दुख में मिलकर समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं, या आप कह सकते हो सुख में उसके सुख को और बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं और दुख में उसके दुख को कम करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जब तक लोग आपस में मिलेंगे नहीं तब तक अपने सुख दुख नहीं बांट सकते। ये गांव का जीवन। हम जो ज्यादा समस्या इस बुजुर्गों की है वो शहरों की है। शहरों में सुख परिवार नहीं है, वहां पे एकल परिवार है अधिक, और एकल परिवार में बेटा बहू सब जॉब पे हैं, काम पर जाते हैं, बच्चों की जो परवरिश है वो क्रश में या आंगनबाड़ी में या किसी दूसरे स्कूल में होती है, तो उनका अपने पेरेंट्स से लगाव भी कम हो जाता है। बाद में हायर एजुकेशन के लिए दूसरे शहरों में, बड़े शहरों में या फॉरेन में चले जाते हैं तो उनका लगाव कम हो जाता है। और इसीलिए जब अपन पेरेंट्स को बच्चों की जरूरत होती है तो उनके वो पास नहीं होते, क्योंकि 10 साल से, 20 साल से, 15 साल से वो बाहर पढ़ रहे हैं तो उनका लगाव कम हो जाता है। और मेरा ये भी मानना है कि यदि आप परिवार से जुड़े रहेंगे तो अपने समाज से जुड़े रहेंगे, क्योंकि आजकल जो चलन है गांव में या शहरों में भी हो सकता है चलन है, बच्चे आते हैं मोबाइल पे और मोबाइल पे सारा दिन उसी पे बिजी रहते हैं। कोई आपके घर में मेहमान आता है, उससे विश नहीं करना, उससे बात नहीं करना, वो जो अकेलापन है वो बाद में ये सबसे मेन रीजन है जिसकी वजह से आपके बच्चे आपके पेरेंट्स की उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते जितनी करनी चाहिए थी। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि नहीं करते, मैं सरकार को, केंद्र सरकार को, हरियाणा सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बुजुर्गों के लिए ऐसी ऐसी स्कीम चलाई हुई है, विधवाओं के लिए पेंशन स्कीम चलाई हुई है, बुजुर्गों के लिए बुढ़ापा पेंशन मिलती है, ताकि जब बच्चे उनके साथ नहीं होते, वो अकेले होते हैं, उनको गुजारा नहीं चल पाता और उस समय वो पेंशन के काम आती है। और मैं मुख्यमंत्री हरियाणा नैब सिंह सैनी जी का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने जनवरी से बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान किया है, ताकि वो बुजुर्ग लोग अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें और एक जो मैसेज दुनिया को दे सकें कि इंडिया का जो बुजुर्ग है वो भी सम्मानपूर्वक जीता है, हमारे बुजुर्ग भी सम्मानपूर्वक जीते हैं, ये मैसेज हमारे बुजुर्गों के माध्यम से पूरी दुनिया को दिया जाना चाहिए।
4: डॉक्टर साहब, मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है कि आप बहुत सारे अखबारों में लेख लिखते हैं, आपकी बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित हुई है, आपकी लिखी किताबें इस समय बच्चे कॉलेजेस और स्कूलों में पढ़ते हैं, तो क्या कोई ऐसा विचार है कि कुछ ऐसी आप पुस्तक लिखें या कोई ऐसा आर्टिकल आप लिखें जिसमें हम युवा जो हमारे देश के हैं उनको हम ये बताएं कि हमारे बुजुर्ग हमारे लिए कितना जरूरी है, और जैसे हम एक कार्यक्रम इस समय चला रहे हैं हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, तो बुजुर्गों की वजह से ही हमारी जिंदगी जो है वो आगे चलती है, तो क्या इस विषय में आप कुछ आगे आने वाले दिनों में कोई लेखन या कोई पुस्तक लिखने वाले हैं?
5: जी, मेरी 4 साल पहले की बुक लिखी हुई है, ह्यूमन राइट्स एंड ओल्ड एज होम, उस पे मैंने बुक लिखी थी
4: जी।
5: और मैंने कई सारे सिटीज को में जाकर जो ओल्ड एज होम है जहाँ पे बुजुर्ग लोग रहते हैं उनके जीवन को स्टडी किया था, उसके बाद मैंने वो बुक लिखी थी। मैं ये मानता हूँ कि जो बुजुर्ग घर से जाकर ओल्ड एज होम में रह रहे हैं
4: जी,
5: हालांकि वो अपने पारिवारिक दूर से दूर हैं, लेकिन वो अपने परिवार से ज्यादा वहाँ पे खुद को एंजॉय कर रहे हैं, और वो घर वापस भी नहीं आना चाहते क्योंकि उनके बच्चों ने और उनके रिश्तेदारों ने उनको इतना परेशान किया है कि वो वापस नहीं आना चाहते। लेकिन मैं इसका समर्थन नहीं करता, मैं ये मानता हूँ कि जितनी जिम्मेवारी पेरेंट्स की है उतनी बच्चों की भी जिम्मेवारी है, सुधार बच्चे भी करें और थोड़ा सुधार पेरेंट्स भी करें, यदि दोनों तालमेल करेंगे तो शायद उनको किसी ओल्ड एज आश्रम में न जाना पड़े और शायद अपने घर पर ही अपने परिवार के साथ घूर रहे।
4: आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे श्रोताओं के मार्गदर्शक भी है, और आपसे जब हम बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे जो श्रोता हैं वो इन बातों को सुने और उनको अपने जीवन में उतारे, क्योंकि आपकी बात कही जो है वो एक मील का पत्थर है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके नाम के 22 से ज्यादा पुस्तकें प्रकाशित हुई है, जो बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं वो आपकी लिखी किताबें पढ़ते हैं, तो आपका जो कहना है वो हम सबके लिए भी और हमारे श्रोताओं के लिए भी बहुत बड़ी बात है। तो पेरेंट्स के बारे में और बच्चों के बारे में आखिर में आप क्या इस कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान के माध्यम से आखिर में बताना चाहते हैं?
5: मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ कि हम ये ना सोचें कि हमारे बच्चे हमारा ध्यान रखेंगे या नहीं रखेंगे, या पेरेंट्स ये ना सोचें कि हमारे बच्चे हमारा ध्यान रखेंगे नहीं, दोनों एक दूसरे पर विश्वास रखें, बच्चे भी ध्यान रखेंगे और पेरेंट्स भी ध्यान रखेंगे, यदि हम विश्वास रखेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। और विश्वास और भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय संस्कारों में, भारतीय मूल्यों में सबसे बड़ा एक चिन्ह है, यदि हम ये विश्वास रखेंगे तो ये नौबत नहीं आएगी, ये मेरा संदेश है, जरूर विश्वास रखें।
4: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जगदीप सिंह जी, और हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे देश में जो वृद्ध आश्रम है उनकी संख्या आने वाले दिनों में कम हो और माँ बाप इज्जत सम्मान के साथ अपने बच्चों के साथ बने रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
3: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी, मेरे सारे सवालों का जवाब भी मिल गया और काम करने के लिए हौसला भी मिल गया।
2: लीजिए दादू, मेरे दोस्त भी आ गए।
6: नमस्ते दादाजी,
2: हम अपनी क्लास शुरू करें?
3: भाई मैं आप लोगों जितना इंटेलिजेंट तो नहीं हूँ, कंप्यूटर भी नाम मात्र को जानता हूँ, सिखा लोगे ना मुझे?
6: दादाजी इंटेलिजेंट तो पता नहीं, लेकिन एनर्जेटिक तो आप हैं, वो काफी है।
3: बस तुम जैसे बच्चों को देखकर जोश आ जाता है, जब कभी जरा ढीला पड़ता हूँ ना तो ये है ना लक्ष्मी बम, धमाका करके मुझे जगा देती है।
6: दादाजी लक्ष्मी ने बताया आप अकाउंट ऑफिस में काम करते थे, यानी आपको बाजार, बजट और टैक्स वगैरह सबकी जानकारी है?
3: है तो सही, पर आप क्यों पूछ रहे हैं?
6: आप कह रहे थे ना कि आप इंटेलिजेंट नहीं हैं। अब देखिए, आप टैक्स के मामले आसानी से सुलझाते थे और हमें कोचिंग जाने के बाद भी इस सब्जेक्ट में बस पासिंग नंबर आते हैं।
3: अरे ये इतना भी मुश्किल नहीं है,
6: हमें तो बड़ा बोरिंग लगता है।
3: रुचि नहीं आती इसलिए नंबर नहीं आते,
6: मजबूरी में पढ़ना पड़ता है, मैं तो सर की क्लास में पीछे बैठ के झपकी भी ले लेता हूँ।
3: शुरू शुरू में ये बोरिंग जरूर लगता है, लेकिन एक बार समझ में आने लग जाए तो इससे इंटरेस्टिंग कुछ भी नहीं।
2: मैंने इन लोगों को बताया था, हमारे भारत दादू गांवों में जब से बच्चों को इकोनॉमिक्स पढ़ाने लगे हैं, उनके डिस्टिंक्शन आने लगे।
6: बस तो डील कर लेते हैं, एक हाथ दे एक हाथ ले।
2: मतलब
6: कंप्यूटर ट्रेनिंग ले, टैक्स पढ़ाई दे। दादाजी ये डील कर लीजिए।
2: लेकिन दादाजी गांव में रहते हैं, यहाँ कितने दिन तुम लोगों को पढ़ा पाएंगे?
6: नो प्रॉब्लम, दादाजी अब टेक्नो फ्रेंडली होने वाले हैं, तो दूर बैठकर भी हमारी क्लास ले पाएंगे। क्यों दादाजी?
3: डील की जा सकती है। आप मुझे पढ़ाइएगा, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा।
6: हुर्रे, यस, ये तो पार्टी वाली बात हो गई।
2: अभी पार्टी तो नहीं कर सकते, लेकिन इस डील को सेलिब्रेट तो कर सकते हैं।
6: कैसे? कुछ खाके?
2: खा भी लेंगे, पहले कुछ गाना वाना हो जाए।
6: बता कौन सा गाना लगाऊं?
2: गाना तो लाइव चलेगा।
6: लाइव? कौन गाएगा?
2: अरे आप ही गाओगे।
6: अरे मैं? ना ना ना, अगर मैंने गाना गाया सबको कान बंद करना पड़ेगा। लक्ष्मी थोड़ा थोड़ा गा सकती है।
2: लक्ष्मी थोड़ा थोड़ा गा सकती है, लेकिन लक्ष्मी के दादाजी बहुत अच्छा गाते हैं।
3: अरे बेटा, पहले गांव की मंडली में गा लिया करते थे, अब कहाँ गाना वाना।
6: गाइए ना दादाजी, हमें गांव का संगीत लाइव सुनने को कहाँ मिलता है।
3: पर बेटा।
6: दादाजी अब हम लक्ष्मी के दोस्त ही नहीं, आपके टीचर भी हो गए हैं, तो आपको हमारा आदेश मानना पड़ेगा।
3: अच्छा ठीक है भाई, लक्ष्मी तुम भी मेरा साथ देना।
2: ओके दादाजी।

0: वाह वाह, ऐसे ही गाते बजाते पढ़ाने वाला टीचर मिल जाए ना, तो हमारा तो बेड़ा पार हो जाए। और हमें भी गाते बजाते ही दादू को सिखाना पड़ेगा।
1: गाते बजाते तो नहीं, लेकिन मैं तुम्हें कहानी सुनाते हुए पढ़ा सकता हूँ।
2: हम अपनी क्लास शुरू करें?
0: हाँ हाँ सुनाइए ना दादाजी।
1: ठीक है ठीक है, तो सुनो। एक गांव में एक विधवा अपने दो बेटों के साथ रहती थी। एक दिन एक दुर्घटना में उसका एक पुत्र मर गया और कुछ समय बाद दूसरा पुत्र काम धंधे की तलाश में शहर से दूर चला गया। अब विधवा अकेली रह गई। बेटे को परदेश गए कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन एक व्यक्ति विधवा के दरवाजे पर आकर प्रार्थना करने लगा कि हे माई, मैं मुसाफिर हूं, आज की रात मुझे घर में ठहरने की जगह दे दीजिए। विधवा उससे आदर से घर के अंदर ले गई। उत्सुकतावश उसने मुसाफिर से पूछा कि तुम कहां से आ रहे हो? उसने जवाब दिया, दूसरी दुनिया से। बोली बुढ़िया, पहले तो कुछ समझी नहीं। उसने मासूमियत से पूछा, दूसरी दुनिया यानी भगवान के घर से? मुसाफिर धीरे से मुस्कुरा दिया और दूसरी दुनिया के बारे में तरह तरह की बातें बताने लगा। विधवा की आंखों में चमक आ गई। उसने स्वीकार कर लिया कि जरूर ये भगवान का भेजा हुआ दूत है जो मेरे मरे हुए बेटे की खबर लेकर आया है। विधवा ने उसे अपने बेटे के बारे में पूछा तो मुसाफिर ने मुस्कुराते हुए बताया कि आपका बेटा और मैं भगवान के यहाँ एक ही कमरे में रहते हैं। वो वहाँ सारस पालता है। आप तो जानती ही हैं अम्मा जी कि सारस हमेशा कटली झाड़ियों में चले जाते हैं। उनके पीछे भागते भागते आपके बेटे के कपड़े जूते सब फट गए हैं। बड़ा बुरा हाल है, आप देखेंगी तो रोना आ जाएगा। मुसाफिर की बात सुनकर विधवा सचमुच रोने लग गई। उसने रोते रोते मुसाफिर से कहा, बेटा मेरे पास थोड़े से रुपए हैं और कुछ कपड़े हैं, तुम ये मेरे बेटे को दे देना तो बड़ी कृपा होगी। मुसाफिर ने इस तरह हामी भरी जैसे कि वो विधवा का बहुत बड़ा काम करने वाला है। दूसरी सुबह वो मुसाफिर विधवा से कपड़े और रुपए लेकर चला गया। कुछ दिनों बाद विधवा का दूसरा बेटा परदेश से वापस आया तो खाना खाते हुए विधवा ने उससे कहा, बेटा तुम्हारा भाई बहुत कष्ट में है। भाई ये सुनकर चौंक गया। जब उनकी मां ने उससे पूरी बात बताई तो वो गुस्से में चिल्लाने लगा, मरने के बाद कोई लौट कर आता है भला? वो दूसरी दुनिया का नहीं था, इसी दुनिया का कोई ठग था और तुमने बिना सोचे समझे उससे कपड़े और रुपए दे दिए। तुमने तो मुझे कंगाल करने का सोच लिया है मां। वो गुस्से में और भी बहुत कुछ बोलता रहा। विधवा ने बुझे स्वर से कहा, तू ठीक कहता है बेटा, मैं ममता में बहकर उसके बहकावे में आ गई, गुस्सा मत कर, मैं तो जाहिल बुढ़िया हूं। इस दुनिया में अच्छे अच्छे लोग बेवकूफ बन जाते हैं। विधवा ने कितना ही अफसोस किया लेकिन उसके बेटे का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने चीखते हुए कहा, दुनिया में कितने भी जाहिल लोग हों लेकिन तुम जैसा मूर्ख कोई नहीं होगा। विधवा ने उसे शांत करने के लिए रोते हुए कहा, दुनिया में मूर्खों की कमी नहीं है बेटा, एक ढूंढोगे हजार मिलेंगे। वो गुस्से में अपना बैग उठाता हुआ बोला, ठीक है मैं जाता हूं, अगर तुमसे बड़ा कोई मूर्ख मिला तो वापस आ जाऊंगा, नहीं तो मुझे भी मरा हुआ समझकर भूल जाना। विधवा रोती बिलखती उससे रोकती रही पर वो पैर पटकता चला गया। अब युवक किसी मूर्ख की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। एक गांव में जमींदार के घर के बाहर कुछ बकरियां चर रही थी। युवक एक बकरी के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और कुछ बुदबुदाने लगा। घर की खिड़की से जमींदारिन ये सब देख रही थी। उससे

0: की उत्सुकता हुई। उसने अपनी नौकरानी को भेजकर पूछवाया तो युवक ने बड़ी गंभीरता से बताया, ये चिटकबरी वाली मेरी पत्नी की सगी बहन है, मैं इससे पहचान गया हूं। नौकरानी ने सोचा कोई पागल है, इसलिए उससे बहलाने के लिए उसने कहा, ठीक है तुम पत्नी की बहन से मिल लिए, अब जाओ। लेकिन युवक रोते हुए कहने लगा, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, वो अपनी प्यारी बहन से मिलना चाहती है, मैं कब से इसे ढूंढ रहा हूं, ये अब मिली है मुझे, मैं इसे घर लेकर ही जाऊंगा, एक बार मेरी पत्नी इससे मिल ले फिर मैं इसे वापस यहीं छोड़ जाऊंगा। नौकरानी ने ये बात अपनी मालकिन को बताई। पहले तो जमींदारिन को हंसी आ गई, लेकिन उसका रोना गिड़गिड़ाना सुनकर उससे युवक पर दया आई। उसने युवक से कहा, ठीक है तुम अपनी पत्नी की बहन को ले जाओ, लेकिन उसका छोटा मेमना उसके बगैर नहीं रह पाएगा, वो माँ का दूध पीता है, उससे भी साथ ले जाना पड़ेगा, तुम हमारी गाड़ी भी ले जाओ ताकि अपनी बहन से मिलने के बाद इन दोनों को जल्द से जल्द वापस यहाँ भेज सको। युवक उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हुआ उनकी ही गाड़ी में उनकी बकरी और उसका मेमना लेकर चला गया। जमींदार के लौटने पर जमींदारिन उन्हें हंस हंस के इस घटना के बारे में बताने लगी। पत्नी की बेवकूफी सुनकर जमींदार ने अपना सिर पीट लिया। उसने गुस्से में अपनी पत्नी को मूर्ख, गंवार, बेवकूफ और भी कई अपशब्द कहे। फिर उसने सोचा, अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा, उससे किसी तरह पकड़ना होगा। वो अपने घोड़े को लेकर उसी दिशा में भागा जिस दिशा में वो युवक गया था। युवक को इस खतरे का आभास था। उसने गाड़ी को जंगल में सुरक्षित जगह छुपाया और अपनी टोपी को गमछे से ढक कर जंगल के बाहर बैठ गया। अनुमान के अनुसार जमींदार बकरी को ढूंढता हुआ वहां पहुंच गया। उसने युवक से पूछा, भाई तुमने किसी व्यक्ति को बकरी मेमना लेकर भागते देखा? वो चोर है, बताओ, जल्द बताओ। युवक ने बड़ी गंभीरता से कहा, देखा तो है, उसने मुझे रास्ता भी पूछा था, वो इस तरफ गया है। जमींदार जैसे ही जाने को हुआ, युवक ने उसे रोका, लेकिन यहां से आगे तो मंडी है, वो यदि बकरियों को वहां छोड़ दें तो आप उस चोर को कैसे पहचानेंगे? जमींदार असमंजस में पड़ गया। उसने युवक से कहा, तुमने तो उसे अच्छे से देखा है, तुम उसे पहचान लोगे? युवक के हां कहने पर जमींदार ने उससे विनती की, तुम मेरा घोड़ा ले जाओ और उस चोर को पकड़ के ले आओ, बदले में तुम्हें 1,000 रुपया इनाम दूंगा। युवक ने मायूसी से कहा, मैं चला तो जाता, लेकिन आज ही मैंने जंगल से बड़ा कीमती बाज पकड़ा है जो मेरे गमछे के अंदर है, मेरे हाथ हटाते ही वो उड़ जाएगा। जमींदार ने उसे वचन दिया कि उसके लौटते तक वो उसके बाज की रक्षा करेगा, इनाम के 1,000 रुपए भी अभी इसी वक्त दे देगा। युवक राजी हो गया। जमींदार को वहीं बैठा कर उससे 1,000 रुपए और उसका घोड़ा लेकर वो वहां से निकल गया। सारा सामान लेकर वो मां के पास पहुंचा। उसने मां से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। तुम ठीक कहती थी मां, दुनिया में मूर्खों की कोई कमी नहीं, देखो मैं मुफ्त में बकरी, मेमना, घोड़ा और 1,000 रुपए भी लाया हूं, अब मैं यहीं रहूंगा तुम्हारे साथ। बेटे के लौट आने से विधवा खुश तो हुई, लेकिन सारी बात जानकर उसने उससे कहा, बेटा कोई ममता दया में पकड़कर मूर्ख बन सकता है, लेकिन इस तरह लोगों को मूर्ख बनाकर लूटने से सारी दुनिया पापियों से भर जाएगी, जा उसका सारा सामान उसे लौटा दे।
1: तो बेटे ने सारा सामान लौटा दिया।
2: ये तो तुम लोग तय करो, हमारी कहानी तो यहीं खत्म होती है।
3: यानी राह दिखाने वाला अपना काम कर देता है, उस राह पर चलना है या नहीं ये हमें खुद तय करना होगा।
2: बिल्कुल सही, जैसे हम वृद्धों के लिए बनी ये वयो अभ्युदय योजना। सरकार ने तो योजना लागू कर दी, अब इसका लाभ लेना हमारे हाथ में है।
1: वाह दादाजी, कैसे बात से बात जोड़ दी।
3: अब चलो काम शुरू करें, कुछ बातें अगली बार के लिए भी छोड़ दें।
1: अगली बार हम फिर आएंगे, कहानी, गीत और ढेर सारी जानकारियों का पिटारा भी लेकर आएंगे।
2: आपने अटल वायु अभ्युदय योजना से लाभ लेना शुरू किया कि नहीं? पत्रों या फोन के जरिए हमें जानकारी तो दीजिए। नहीं किया तो 14567 एल्डर लाइन नंबर पर फोन लगाकर अपनी समस्या बताएंगे, तब ना सहायता मिलेगी।
1: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्योदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान कार्यक्रम सुनते रहे, जानकारियां इकट्ठी करते रहे और लाभ भी लेते रहिए।
2: फिलहाल आज के लिए अनुमति दीजिए। नमस्ते। आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान एपिसोड 7, उम्र बढ़ने के साथ साथ सक्रिय जीवन यानी एक्टिव एजिंग। यह कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित था। इस कार्यक्रम में लक्ष्मी के किरदार को आवाज दी किरणी दास ने, भारत दद्दू को आवाज दी भारत सोपोरी ने और मित्र के किरदार को आवाज दी राहुल अलियान ने। इस कार्यक्रम में सूत्रधार की भूमिका निभाई मुकेश गुप्ता ने। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड, एडिट व निर्देशित किया भारत सोपोरी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

0: Amore mio, dove sei tu? Hey, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के?

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: आइए जानते हैं कि सरकार की क्या जिम्मेदारी है आंगनवाड़ी के लिए। भारत जी, अब बात करते हैं इस पूरी मुहिम में सरकार की तरफ से क्या क्या किया जा रहा है, क्योंकि जिम्मेदारी साझा तो है पर शुरुआत सरकार को ही करनी होती है।
1: बिल्कुल, सबसे पहले तो 2018 में शुरू हुआ पोषण अभियान, जिससे अब मिशन पोषण 2.0 के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। इसका मकसद है कुपोषण के मुद्दे को जड़ से, यानी एक जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर हल करना, गर्भवती महिला से लेकर छोटे बच्चे और किशोरियों तक।
0: और इसी के साथ चल रहा है मिशन सक्षम आंगनवाड़ी कार्यक्रम, जिसके तहत देश भर के करीब 2,00,000 आंगनवाड़ी केंद्र को हर साल करीब 40,000 की दर से सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है।
1: इसका मतलब क्या है अनु, थोड़ा समझाइए हमारे श्रोताओं को।
0: इसका मतलब है बेहतर भवन, पीने के पानी की सुविधा, चालू हालत में शौचालय, हाथ धोने के लिए साबुन, बच्चों के खेलने और सीखने के लिए बेहतर माहौल। सरकार ने तो आंगनवाड़ी भवन निर्माण की लागत भी बढ़ाई है। पहले जो राशि 12,000 रुपए थी, उसे बढ़ाकर 36,000 रुपए कर दिया गया है, ताकि केंद्र मजबूत और सुविधाजनक बन सके।
1: और गुणवत्ता की निगरानी के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं ना?
0: जी हाँ, सरकार ने सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए हैं, ताकि आंगनवाड़ी केंद्रों में मिलने वाली भोजन की गुणवत्ता बनी रहे। हर जिले में जिला मजिस्ट्रेट को इसकी निगरानी के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है, और हर महीने एक जिला पोषण समिति की बैठक होती है, जिसमें प्रगति की समीक्षा होती है।
1: और डिजिटल निगरानी के लिए भी कुछ किया गया है?
0: बिल्कुल, पोषण ट्रैकर ऐप, यह मार्च 2021 से शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण शासन उपकरण है, जिसके जरिए हर आंगनवाड़ी केंद्र की गतिविधियों, बच्चों के वजन, लंबाई और पोषण स्थिति का रियल टाइम डेटा दर्ज होता है। आज इस पर करोड़ों लाभार्थी पंजीकृत है।
1: यानी सरकार अब सिर्फ योजना बनाकर नहीं छोड़ रही, बल्कि उसकी निगरानी और जवाबदेही भी सुनिश्चित कर रही है।

0: आइए अब जानते हैं आंगनवाड़ी बच्चों के लिए कितनी सहयोगी हो सकती है। भारत जी, अब बात करते हैं कि यह सब बच्चों के लिए असल में कितना मायने रखता है।
1: देखिए अन, आंगनवाड़ी केंद्र सिर्फ खाना बांटने की जगह नहीं है, ये 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों के लिए पोषण, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और शुरुआती शिक्षा यानी प्रारंभिक बाल अवस्था विकास का सबसे पहला और सबसे अहम केंद्र है।
0: सही कहा, अगर किसी बच्चे को शुरुआती सालों में सही पोषण और देखभाल मिल जाए तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास जीवन भर के लिए मजबूत नींव पर टिकता है। और यही वजह है कि कामकाजी महिलाओं के लिए भी सक्षम आंगनवाड़ी, क्रेच और सखी निवास जैसी सुविधाएं शुरू की जा रही हैं, ताकि माँ काम पर जाए तो बच्चा सुरक्षित हाथों में रहे।
1: और किशोरियों के लिए भी तो अलग से ध्यान दिया जा रहा है अनु।
0: जी हाँ, पोषण 2.0 के तहत पूर्वोत्तर और आकांक्षी जिलों में लाखों किशोरियों की पहचान की गई है, ताकि उन्हें भी इस योजना का लाभ मिले और स्कूल छोड़ने वाली बालिकाओं की संख्या में भी उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है।
1: यानी ये सिर्फ छोटे बच्चों तक सीमित नहीं बल्कि किशोर अवस्था तक फैला हुआ एक व्यापक ढांचा है।

0: आइए अब जानते हैं जन भागीदारी और समाज की भूमिका।
1: तो भारत जी, अब सवाल यह उठता है कि हम आम नागरिक इसमें क्या योगदान दे सकते हैं।
0: बहुत कुछ अनु। सबसे पहले तो अपने आसपास के आंगनवाड़ी केंद्र से जुड़िए। अगर वहाँ पानी, शौचालय या साफ सफाई की कोई कमी दिखे तो उसे स्थानीय प्रशासन तक पहुँचाइए। बच्चों को नियमित रूप से केंद्र भेजिए। पोषण संबंधी जानकारी अपने पड़ोसियों और परिवार के साथ बांटिए।
1: और यही तो पूरी थीम का सार है, हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। जब तक समुदाय खुद आगे बढ़कर इसे अपना नहीं मानेगा, तब तक सिर्फ सरकारी योजनाएं पूरा असर नहीं दिखा पाएंगी।
0: बिल्कुल सही, यही वजह है कि इस साल के अभियान में जन भागीदारी का केंद्र बिंदु बनाया गया है। रैली, गोद भराई, अन्नप्राशन जैसे कार्यक्रम, पोषण मेले, ये सब आयोजित किए जा रहे हैं ताकि हर परिवार इस मुहिम से सीधे जुड़ सके।
1: तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम से हमने जाना कि राष्ट्रीय पोषण माह 2026 सिर्फ एक सरकारी अभियान नहीं, बल्कि एक ऐसा मंच है जहां सरकार, समाज और परिवार मिलकर हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प लेते हैं।
0: बिल्कुल अनु, आंगनवाड़ी केंद्र मजबूत होगा तभी हमारा भविष्य यानी हमारे बच्चे मजबूत होंगे। और ये जिम्मेदारी अकेले सरकार की नहीं, हम सब की है।
1: पोषण केवल भोजन से जुड़ा विषय नहीं है, यह हमारे देश के आने वाले भविष्य और मानव संसाधन के विकास से जुड़ा मुद्दा है।
0: बिल्कुल सही, FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता के माध्यम से हम अपने सभी श्रोताओं से अपील करते हैं, अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र से जुड़े और वहां उपलब्ध सरकारी सुविधाओं की जानकारी लें। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के नियमित स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण में सहयोग करें। पोषण अभियान को एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानकर अपने परिवार और आसपास जागरूकता फैलाएं।
1: क्योंकि जब हर घर सही पोषण पाएगा तभी हमारा भारत कुपोषण मुक्त और सशक्त बन पाएगा।
2: पोषण से खुशहाल बने हर बच्चा।
0: इसी जानकारी के साथ अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। आप सुनते रहिए आपका अपना और मनपसंद रेडियो स्टेशन FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, जो आपकी जिंदगी का हम सफर है और साथ ही आपके जीवन का प्रवाह भी। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे लेते हैं हम विदा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: अब मुझे भी दीजिए आज्ञा, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार, जय हिंद।

0: आपने ट्यून इन किया है सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज हम आपके साथ एक संवेदनशील विषय पर बात करना चाहेंगे जो हम सबके लिए ही बहुत ही जरूरी है। ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं हरियाणा के सभी सामुदायिक रेडियो के माध्यम से, गांवों वासियों के लिए, सरपंचों के लिए, सभी हरियाणा वासियों के लिए। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए और अपने आसपास के वातावरण को बचा के रखिए।
1: एक छोटी सी जिम्मेदारी सबको बचा।
0: हरियाणा में खुले पड़े बोरवेल एक गंभीर और जानलेवा समस्या बन चुकी है। आए दिन मासूम बच्चे खेलते खेलते इन गहरे गड्ढों में गिर जाते हैं, जिससे न केवल उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है बल्कि पूरे प्रशासनिक अमले की सांसें अटक जाती है। खेतों में बोरवेल को खुला छोड़ना एक प्रशासनिक लापरवाही ही नहीं है बल्कि एक गंभीर अपराध है। सुरक्षा सर्वोपरि। हरियाणा में खुले बोरवेल का खतरा और कानूनी परिणाम। खेतों में सिंचाई के लिए बोरवेल खोदना किसानों की जरूरत है, लेकिन काम पूरा होने के बाद या बोरवेल के असफल होने पर उसे खुला छोड़ देना साक्षात मौत को दावत देने जैसा है। हरियाणा के विभिन्न जिलों से ऐसे कई दर्दनाक घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जहां मासूमों को इन अंधेरे कुओं से निकालने के लिए सेना और NDRF को घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ता है। बोरवेल को बंद रखना क्यों जरूरी है, कुछ बिंदु आपके सामने रखता हूं। पहला, मासूमों की सुरक्षा। खुले बोरवेल सबसे बड़ा खतरा बच्चों और मवेशियों यानी पशुओं के लिए होते हैं। खेल कूद के दौरान या घास चरते समय इनमें गिरने का जोखिम हमेशा बना रहता है। दूसरा, मानवीय और आर्थिक नुकसान। एक हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में लाखों रुपए और प्रशासनिक ऊर्जा खर्च होती है। सबसे बढ़कर कई बार घंटों की मशक्कत के बाद भी बच्चों की जान नहीं बचाई जा सकती है, जो कि एक कभी ना भरने वाला घाव है। तीसरा, सतर्कता ही बचाव है। बोरवेल का काम खत्म होते ही उससे लोहे के मजबूत ढक्कन यानी कैप से ढकना, चारों तरफ कंक्रीट से पक्का करना और कटीली तारों की फेंसिंग करना बेहद जरूरी है। कानूनी प्रावधान और सख्त दंड। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन ने खुले बोरवेल छोड़ने वालों के खिलाफ कड़े रुख अपनाए हैं। अगर कोई अपने खेत या प्लॉट में बोरवेल खुला छोड़ता है तो उसके खिलाफ निम्नलिखित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय न्याय संहिता BNS की धाराएं, जो पहले IPS के नाम से हम जानते थे। पहला, लापरवाही से जान जोखिम में डालना। खुले बोरवेल के कारण किसी की जान को खतरा पैदा करने पर लापरवाही का मामला दर्ज होता है। दूसरा, गैर इरादतन हत्या का मामला। यदि खुले बोरवेल में गिरने से किसी बच्चे या व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जमीन के मालिक और बोरवेल खोदने वाली एजेंसी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या यानी कल्पेबल होमिसाइड के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसमें दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार बोरवेल खोदने से कम 15 दिन पहले जिला प्रशासन यानी DC या सरपंच को लिखित सूचना देना अनिवार्य है। नियम तोड़ने पर बोरवेल को तुरंत सील कर दिया जाता है। जमीन मालिक पर भारी प्रशासनिक जुर्माना लगाया जाता है। हादसे की स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन यानी बचाव कार्य का पूरा खर्च भी दोषी जमीन मालिक से वसूला जा सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे कर्तव्य की। एक छोटी सी लापरवाही एक जिंदगी का अंत कर सकती है। यदि आपके आसपास या खेत में कोई ऐसा बोरवेल है जो इस्तेमाल में नहीं है तो उसे तुरंत मिट्टी, मलबे या कंक्रीट से ऊपर तक भर दें। अगर कोई मकान या जमीन मालिक कहने पर भी बोरवेल बंद नहीं करता है तो

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विस्तार। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अंबा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अंबा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व है।

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें 1.63 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है, जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की, जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ, अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हों तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत, जो आज भी जीवित है। अंबाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अंबाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है, और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अंबाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार रहती।

0: श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी, दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है वहां लहर का संगीत, युगो युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगो युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूँ विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो दस्ता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विदस्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विदस्ता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह, जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं, बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हम सफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई, और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अंबा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था, और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अंबा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था, और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं, और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व है।

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें 1.63 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी, अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है, जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की, जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ। अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हों तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की, विरासत जो आज भी जीवित है। अंबाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अंबाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है, और भगवान वामन का एक मंदिर भी है जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अंबाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार।

0: श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी, दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है वहां लहर का संगीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूँ विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।

सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं सिंगर नीलम नारायण। मेरा एक बहुत प्यारा वीडियो सॉन्ग मीठे मीठे इश्क की रिलीज हो चुका है, जो आप रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पे सुनने

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो रेडियो वत्तस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ ते सुनते रहो अपने

0: आना।
1: तुम जाओ, अंजू मैं यहीं ठहरता हूँ।
0: क्यों, उनकी चोरी की है जो सामने जाने से डरते हो?
1: आखिर इंसान ही तो हूँ मैं।
0: अच्छा तो चलो, मैं

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

0: ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण, सुनते रहिए दिल से।
2: यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विद अ स्टार, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता हमसफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। प्रस्तुत है कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए, जरा याद करो कुर्बानी, एपिसोड 3। आज का कार्यक्रम वायुसेना विशेष है। कार्यक्रम के लेखक एवं प्रस्तुतकर्ता नरेश शर्मा, रिकॉर्डिस्ट राहुल अलियान, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी।

FM 90.0 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अम्बाला का अपना रेडियो, और मैं हूं आपका रेडियो हम सफर नरेश शर्मा। दोस्तों, हमारी सेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में गिनी जाती है। भारतीय थल सेना के गुर्राहट दुश्मनों के करेज में कंपकंपी ले आती है, और वहीं भारत की जल सेना विशाल समुद्र को शांत रखती है। लेकिन क्या आपने कभी इस चीज के ऊपर गौर किया है कि जल और थल की भांति आसमान पर भी सीमाएं होती हैं। अंतरराष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार सभी देशों को अपनी अपनी सीमाओं और रेखा के बीच में रहना होता है, परंतु जब कभी किसी दुश्मन का समय खराब होता है ना, तो वो भारत की वायु सीमा का उल्लंघन करता है, या वायु सीमा के रास्ते हमारे राष्ट्र में अवैध गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। कई बार दुश्मन वायुमार्ग से चुपके से हमारी सीमा में कुछ हलचल कर जाते हैं, कुछ ऐसी हरकत करते हैं जिससे हमारे राष्ट्र की अखंडता और नागरिकों को नुकसान पहुंचाया जा सके। तो ऐसे में हमारी सक्षम वायुसेना ऐसा सबक सिखाती है कि दुश्मन बरसों तक उस चोट को भूल नहीं पाता। अभी कुछ दिन पहले की तो बात है, जब दुश्मन ने भारतीय पायलट अभिनंदन को हिरासत में रखने का ना सिर्फ बदला चुकाया था, बल्कि भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए एयर स्ट्राइक ने दुश्मन के घर में घुसकर ऐसा तांडा मचाया कि दुश्मन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, और उसने अभिनंदन को बिना शर्त सम्मान भारत को वापस कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि ऐसा न करने की स्थिति में उसका नाम निशान इतिहास के पन्नों तक सिमट जाएगा। तो ये खौफ है भारतीय वायुसेना का। तो इसी बहादुर वायुसेना के सम्मान में हम अपना आज का विशेष कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए विशेष रूप से वायुसेना को समर्पित करते हुए पेश करते हैं रेडियो वितस्ता की विशेष पेशकश वायु सैनिकों के लिए। नजरों को नजारों की कमी तो नहीं, नजरों को नजारों की कमी तो नहीं, फूलों को बहारों की कमी तो नहीं, वो कबूल कर लें तो शुक्र खुदा, वरना आसमां को सितारों की कमी तो नहीं, आसमां को सितारों की कमी तो नहीं।

और दोस्तों अगर कोई जमीन पर गिर जाए ना तो उठ जाता है, लेकिन आसमान से गिरा हुआ तो उठ ही जाता है। यानी वायुसेना में रहकर देश की सेवा करना बेहद जोखिम भरा काम है, लेकिन फिर भी हमारे वीर वायु सैनिक अपने हर कर्तव्य को हंसते हंसते निभाते चले जाते हैं, दिल में उमड़ते हुए यादों के बादल, लेकिन चेहरे पर वही मुस्कान, क्योंकि कुछ लिख नहीं पाते, कुछ सुना नहीं पाते, हाले दिल जुबां पर ला नहीं पाते। वो फूल भेजते हैं मोहब्बत के नाम पर वो समझ नहीं पाते, हम समझा नहीं पाते।

याद है ना? आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, हम वाला का अपना रेडियो, और मैं आपका रेडियो हम सफर नरेश शर्मा आपको सुना रहा हूँ हमारा विशेष कार्यक्रम वायु सैनिकों के लिए। ये जो मिलन और जुदाई है ना, इनके बीच अक्सर जंग चलती रहती है। कभी जीत मिलन की होती है तो कभी जुदाई की। हमने एक लौ मोहब्बत की जला रखी है, हमने एक लौ मोहब्बत की जला रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है।

जब कोई दुश्मन हमारी ओर आंख उठाकर देखता है ना, तब हमारी वायुसेना उसका ऐसा हाल कर देती है कि उसकी कई नस्लें सदियों तक भूल नहीं पाती हैं, और शर्म की वजह से वो अपनी गलती अपनी औलादों को बता भी नहीं पाते, क्योंकि भारतीय वायुसेना कभी किसी को छेड़ती नहीं है, और हाँ अगर इनको छेड़ दिया जाए तो फिर ये किसी को छोड़ती भी नहीं है। दुश्मन बस मिन्नतें करता है और ये कहता रहता है कि

भाई बातें बनाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन वायु सैनिक की जिंदगी अपनाना बहुत मुश्किल होता है। इनके जीवन में त्याग, समर्पण और अनुशासन बहुत प्रमुख होते हैं। इनकी दिनचर्या ही इनकी आदत बन जाती है। रेडियो वितस्ता भारतीय वायुसेना के प्रत्येक सैनिक को, चाहे वो किसी भी पद पर तैनात हो, प्रणाम करता है, सलाम करता है, क्योंकि आपका राडार यानी दुश्मन का संहार, हम कभी भी आपकी कुर्बानियों का बदला नहीं चुका सकते। हम पीढ़ियों तक आपको भूल नहीं पाएंगे, और सच पूछिए तो हम भुलाना भी नहीं चाहते।

वो अंग्रेजी में कहावत है ना कि स्काई इज द लिमिट, लेकिन आप तो उस कहावत को भी बहुत पीछे छोड़ गए, क्योंकि आपकी तो कोई सीमा ही नहीं है। अच्छा सैनिक भाई, जरा ये बताओ कि कभी आपके दिल में भी कुछ ना कुछ तो होता होगा, कभी तुम्हारे दिल की जमीन भी तो किसी ना किसी को याद करती होगी। वैसे एक बात बताऊं कि दिल की जमीन पर हर फसल यादों की बोओगे, दिल की जमीन पर अगर फसल यादों की बोओगे, जिसको जितना याद करोगे उतना रोओगे।

सैनिक भाइयों, आपको हमारा ये विशेष कार्यक्रम वायु सैनिकों के लिए कैसा लगा हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप कुछ खास सुनना चाहें तो हमें हमारे मोबाइल नंबर 7056413010 पर फोन कीजिए, हम आपकी फरमाइश को जरूर पूरा करेंगे। आप हमारे सिरों के ताज हैं, अगर हम आंखें हैं तो आप हमारी पलकें हैं, क्योंकि पलकें आंखों की रक्षक होती है ना। इश्क में कोई खोज नहीं होती, इश्क में कोई खोज नहीं होती, हर किसी से ये हर रोज नहीं होती। हमारी जिंदगी में खुद को बेवजह मत समझना, क्योंकि पलकें कभी आंखों पर बोझ नहीं होती। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा, तो फोन करना मत भूलना। और अब अपने रेडियो हम सफर रेडियो दोस्त नरेश शर्मा को आज्ञा दीजिए, फिर एक और कार्यक्रम लेकर आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।

कुर्बानी एपिसोड 3 वायुसेना विशेष। कार्यक्रम को लिखा प्रस्तुत किया नरेश शर्मा ने, रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी का था। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

महफिल से कह दें तुम जो कहो तो सारी महफिल से कह दें पल भर में मशहूर अफसाना।

0: ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला केंट से हमारी प्रसारण, सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपुरी। आइए हम आपको विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे पर आप सभी को हमारे शहर अंबाला के 8 मुख्य विरासतों की अनूठी कहानियां बताते हैं। हम सबको अपने शहर के बारे में जानना चाहिए और ये काम आज FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता आपके लिए कर रहा है। विश्व धरोहर दिवस दुनिया भर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को समर्पित है। ये दिन हर साल 18 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। इस दिन को विश्व धरोहर दिवस के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे पर इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के संयोजक रिटायर्ड कर्नल R.D. सिंह के माध्यम से अंबाला की अनूठी विरासतों की रोचक कहानियां हम आपके लिए लाए हैं। ४०० साल पुराना है रानी का तालाब। रानी के तालाब एवं मंदिर निर्माण करीब 400 साल पूर्व महाराजा पटियाला के अधीन आने वाली छछरौली रियासत के राजा रंजीत सिंह ने करवाया था। राजा ने रानी के शाही स्नान के लिए यहाँ तालाब बनवाया था, जिसमें स्नान के उपरांत यहाँ बनाए शिव मंदिर में रानी रोजाना पूजा अर्चना करती थी। साल 1999 में इस मंदिर को सेना ने अपने सुपुर्द में ले लिया था। गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब आस्था का केंद्र, 8वें सिख गुरु हरकिशन राय से संबंधित पंजोखरा साहिब धार्मिक आस्था का केंद्र है। गुरु हरकिशन राजा जय सिंह के निमंत्रण पर कीरतपुर से दिल्ली जाते समय पंजोखरा साहिब में रुके थे। सिख इतिहास के मुताबिक गुरुद्वारे में गुरु ने अपनी बाल्यावस्था में ही गूंगे व बहरे शख्स से गीता के श्लोक कराए थे। होली रिडीमर चर्च है बेहद खूबसूरत। अंबाला कैंटोनमेंट बसने के महज 5 साल बाद यानी 1848 में बना व 1905 में नए सिरे से निर्मित होली रिडीमर चर्च करीब 115 साल बाद भी बेहद खूबसूरत है। यूरोप की गोथिक शैली में इस कैथोलिक चर्च में एक साथ 800 लोग के प्रार्थना करने की क्षमता है। इस चर्च में भारत के एकमात्र कैथोलिक वाइसराय 1880 से 1884 कोलकाता से शिमला जाते हुए आए थे। सेंट पॉल चर्च पर पाकिस्तान ने गिराए थे बम। सेंट पॉल गैरिजन चर्च का निर्माण 14 जनवरी 1852 में शुरू किया गया था, जो कि 4 जनवरी 1857 को बनकर तैयार हुआ था। 21 सितंबर 1965 को पाकिस्तान बम वर्षक विमानों ने छावनी स्थित एयरफोर्स स्टेशन को निशाने पर लिया था, लेकिन बम सेंट पॉल चर्च पर गिराए गए थे। देश के बंटवारे से पहले ये चर्च डायसिस ऑफ लाहौर की देखरेख में था। कोस मीनार, इन्हीं को देख के चलते थे सैनिक के काफिले। अंबाला शहर के रेलवे रोड पर कपड़ा मार्केट में बनी शेरशाह सूरी की कोस मीनार कभी सैनिकों और जीटी रोड से गुजरने वाले राहगीरों को राह दिखाने का काम करती थी। इस मीनार को 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। बीते जमाने में ये संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इन्हीं मीनारों को देखकर सैनिक काफिले चलते थे और डाक सिस्टम भी इन्हीं के तर्ज पर चलता था। कब्रिस्तान में दफन है अंग्रेज सैनिकों के शव। अंबाला में 1844 में बने कब्रिस्तान में प्रथम विश्व युद्ध व द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए अंग्रेज सैनिकों के शव दफन है। करीब 23 एकड़ में बनाए गए इस ईसाई कब्रिस्तान में 2 लाख के करीब कब्र थे। हर कब्र का अपना एक इतिहास है। यहाँ आज भी अंग्रेज अपने पुरखों की तलाश में आते हैं। प्राचीन अंबिका देवी मंदिर में 250 साल से जल रही है ज्योति।
पिंडी रूप में विराजमान प्राचीन माता अंबिका देवी मंदिर के इतिहास का कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है, लेकिन मंदिर में पिछले करीब 250 साल से मां की ज्योति निरंतर जल रही है। पुराणों में जिक्र और आस्था से जुड़े होने के कारण नवरात्र के मौके पर यहां शीश झुकाने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। गुरुद्वारा लखनऊ साहिब में जन्मी थी माता गुजरी। पिंडी के रूप में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी का जन्म इसी गांव में हुआ था। दशम पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी ने बाल अवस्था में अपने ननिहाल लखनऊ साहब में काफी समय व्यतीत किया। लखनऊ साहब में गुरु गोविंद सिंह जी के ननिहाल होने के कारण ये गांव सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की, और ये जानकारी हमें मिली अंबाला के एक मुख्य समाचार पत्र से। आने वाले दिनों में हम और रिसर्च कर आपको पूरी जानकारी हर एक हेरिटेज के बारे में देते रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा और सभी लोग अंबाला की धरोहर के बारे में जानें। हम प्रयासरत हैं और हम हर दिन कोशिश करते हैं कुछ नया करने की। अब मुझे दीजिए इजाजत, आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए और सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का फ्रीक्वेंसी 90.0 पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

हमारा ये सफर यूं ही चलता रहा और गुजरती गई सदियां। पनाह गाहों में पनाह लेने की ख्वाहिश सीने में ही दब गई। तुमसे मिलना तुमसे बिछड़ना एक आदत सी बन गई। बीते लम्हे रुसवाई का रास्ता दे गए और पथरीली रेतीली राहें मंजिल का पता बता गई।

दिल की बातें ही बातें ही और है तुम्हारी फरामोशी। रंग बिखर पड़े हैं पर रक्स करती हैं फिजाएं। शायद सोचा होगा

की हवाओं के रुख में बदलाव होगा, पर ये जरूरी तो नहीं कि मौसम बदलते ही तुम लौट आओगे। इन घने बादलों को चीर कर, और यह भी तो जरूरी नहीं कि दिल की बातें हों, बातों बातों में तुम या

एक प्यारा सा गांव है, पर अजनबी रास्ते हैं। किससे मुखातिब हो जाए, हर कोई एक दूसरे से अनजान है। इन फासलों के दरमियां अपने आप को भी पहचानना मुश्किल सा लगता है, लेकिन इसके बावजूद यहां खुशबू है अपनेपन की, यहां मिठास है मोहब्बतों की, और दूर एक कोने में यहां दर्द भी बिकता।

परी आसमां से उतरी थी, मुझे छूकर गुजर गई। अपने दुपट्टे से मेरी नींदों को चुरा ले गई। मेरे कानों में चुपके से कुछ कह गई। ये कुछ लम्हे तुम्हारे नाम हो गए, इनको संजो कर संभाल कर रखिएगा। अपनी दुआओं में मुझे शामिल कर मुझ पे एहसान जताया, नवाजिश करम, शुक्रिया।

जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे थे एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक हर दिन रहते हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा। स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:01:02। शुरू का यह कारवां आज अपने आखिरी मोड़ पर आ ठहरा है। उम्मीद है इस सफर में कहीं सुनी बातें आपके मन में देर तक गूंजती रहेंगी और आपके दिन को एक प्यारा सा रंग दे गई होंगी। दोस्तों, आज का दिन पूरे देश के लिए बेहद गौरव और सम्मान का दिन है, क्योंकि आज है भारतीय वायुसेना दिवस। हर साल 8 अक्टूबर को ये दिन मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन सन 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। आज के दिन देश भर में वायुसेना के विभिन्न स्थानों पर विशेष एयर शो और भव्य परेड का आयोजन किया जाता है, जो हमारे वीर वायु योद्धाओं के एहसास और साहस और समर्पण को प्रणाम करता है और इसका हमें एक अवसर भी देता है। एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की पूरी टीम की ओर से भारतीय वायुसेना के सभी वीर जवानों को हार्दिक शुभकामनाएं और नमन। दोस्तों, आज हमने सुबह 7:05 पर और शाम के 7 बजे वायुसेना वीरों के लिए एक विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया। आशा करते हैं आपने यह कार्यक्रम सुना होगा और आपको पसंद भी आया होगा। इसी भावना के साथ दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक बेहद प्रेरणादायक विषय पर। आज का विषय है देश की सुरक्षा में तैनात हर जवान का साहस हम सबके लिए एक प्रेरणा है। जब हम चैन से अपने घर में सोते हैं तो इसके पीछे हमारी सीमाओं और आसमां की रक्षा में दिन रात तैनात जवानों का अथक परिश्रम और बलिदान छिपा होता है। भारतीय वायुसेना के वीर जवान न केवल देश की हवाई सीमाओं की रक्षा करते हैं, बल्कि आपदा राहत कार्यों में भी अपनी जान को जोखिम में डालकर नागरिकों की मदद करते हैं। उनका अनुशासन, साहस और देश के प्रति समर्पण हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। इन वीरों से हम ये सीख मिलती है कि सच्ची देशभक्ति का मतलब है अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण निष्ठा और बिना किसी स्वार्थ के देश की सेवा करना। हमें चाहिए कि हम अपने जवानों का सम्मान करें, उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें और अपने बच्चों में भी देशभक्ति और अनुशासन के ये संस्कार जरूर डालें। दोस्तों, आइए हम सब भारतीय वायुसेना के इन वीर जवानों को प्रणाम करते हैं और उनके साहस से प्रेरणा लेकर अपने अपने जीवन में अनुशासन और देशभक्ति की भावना को और मजबूत करते हैं। यह था विषय आज का और सभी वायु वीरों के लिए हमारी ओर से, टीम रेडियो वितस्ता की ओर से प्रणाम और साधुवाद। हर दिन मैं आपके लिए कुछ पंक्तियां लाता हूं और आज भी 4 पंक्तियां आपके नाम है और आज की पंक्तियां यूं है। नीले आसमान में जो उड़ान भरते हैं निडर होकर, नीले आसमान में जो उड़ान भरते हैं निडर होकर, देश की हिफाजत करते हैं अपनी जान पर खेलकर। वितस्ता भी तो गर्व से बहती है उनके शौर्य के संग, वितस्ता भी तो गर्व से बहती है उनके शौर्य के संग, यही सिखाती है वीरों को सलाम है दिल से सम्मान से। जी हाँ दोस्तों, ये थी 4 पंक्तियां आप सभी के नाम और साथ में वायु वीरों के नाम। जाते जाते आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण देता हूं। कल 9 अक्टूबर 2026 शुक्रवार को जो कार्यक्रम आपके लिए लाए हैं वो इस प्रकार है। सभा की शुरुआत होगी सुबह 5:58 पर, वंदे मातरम से हम करेंगे शुरुआत, लाएंगे आपके लिए एक सुविचार और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करते हैं पंचांग के साथ। 6 बजे सुनेंगे भक्ति संगीत और कल शुक्रवार है, कल आप सुनेंगे शब्द और गुरबानी भी। 7:05 पर सुनेंगे रेट्रो हिट्स एपिसोड 9 दिल की बातें, पेश करेंगे आरजे किरनी। और 8:30 शुक्रवार को आप सुनते हैं रंगमंच की ओर, कल होगा एपिसोड 3 और ये फिल्म गाइड के ऊपर तैयार किया गया है, प्रस्तुत करेंगे मानव मेहरा। 9:30 बॉलीवुड की सुनहरी यादें, कल का कार्यक्रम मोहम्मद रफी साहब के ऊपर तैयार किया गया है, पेश करेंगे रमेश मराठा। और 10:20 पर सुनिए
इनसे मिलिए एपिसोड 13 दविंदर सिंह कुराली जी के साथ की गई बातचीत, पेश करेंगे भारत सोपोरी। संगीत की सभा जारी रहेगी, कल शुक्रवार है, कल आपको इंतजार रहता है कार्यक्रम आपकी फरमाइश का, और कल 2 बजे आप जरूर सुनिएगा आपकी फरमाइशों पर आधारित ये कार्यक्रम। 6:30 बजे आप सुनेंगे शाम गजल, और 7 बजे कार्यक्रम इनसे मिलिए एपिसोड 5 डॉक्टर जगदीप सिंह से बातचीत, और 8:30 बजे हर दिन की तरह कार्यक्रम सुहाना सफर पेश करेंगे रमेश मरहटा। कल की कड़ी है जर्द हो गए मौसम। यह था विवरण कल के कार्यक्रमों का। आशा करते हैं कि आपको कल के कार्यक्रम पसंद आएंगे। अपना फीडबैक हमें भेजेंगे हमारे नंबर 7056413010 पर। नंबर एक बार फिर 7056413010। ये सारी जानकारी तैयार की थी हमारी टीम रेडियो के कैजुअल अनाउंसर अन्नू ने। तो दोस्तों बस आज यहीं तक। आज का ये वक्त आपके साथ बिताकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि यह बातचीत आपके मन में हमारे वीर वायु सैनिकों के प्रति गर्व और सम्मान की भावना जगा गई होगी। अब अपने रेडियो दोस्त भारत सोपोरी को दीजिए इजाजत। लेता हूं आपसे विदा FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्ता के साथ बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं कल सुबह 5:58 पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।